एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि तदनुसार 9 मई सन 2026 स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों को तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुँच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का

आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 183। संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण होगा 6:45 से और इसका पुनः प्रसारण 6:45 से। आज आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज इस श्रृंखला की 7वीं

कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए और 8:15 से कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 8:30 से। पार्श्व गायक तलत महमूद पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी, कहानी है सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका और स्वर ममता सिंह। 11 बजे से चित्रपट संगीत और 11:30 से कार्यक्रम मैटनी शो। 12 बजे आप सुनेंगे समाचार और 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 2 बजे के सुरीला सफर कार्यक्रम का आनंद उठाइए दिन में 1 बजे से और 2 बजे से कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:15 से समाचार होंगे और 2:30 से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे से आप सुनेंगे अपना मनचाहा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे नाटक पोस्टमैन का पहला भाग। के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद है ये और हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। 4 बजे आज पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आप सुनेंगे गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 5 बजे से छाया गीत और 5:30 से तराने नए पुराने। 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे समाचारों के बाद 6:05 से और 6:35 से संध्या रंजन। संध्या 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला और हाँ 7:45 से आज इंद्रधनुष में जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आज सुनो कहानी। सुनो कहानी में आज हम आपको सुनवाएंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आज आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, स्वर है ममता सिंह का। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा और 8:45 से समाचार। रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 से आज के फनकार, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायक तलत महमूद पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम ढलती जाए रात। तो ये थी जानकारी विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की और अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 183।

सुमंत्र से राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 183। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की आज अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और आमंत्रित कलाकारों का हम स्वागत कर रहे हैं। कल्पना जी, हमें बताइए कि क्या शास्त्रीय संगीत में महिलाओं की रचना शैली पुरुषों से भिन्न रही है?
2: जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पहले ज़माने में जो रचनाएं बनाई गई वो अधिकतर पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है, रचित की गई है
1: जी।
2: तो उसमें उनके मन के भाव परिलक्षित होते हैं, या जो वर्णन किया जाता है वो महिला के लिए उद्देश्य से किया जाता है
1: जी, जी।
2: कई रचनाओं में नृत्य के लिए उपयोगी बंदिशें बनाई गई है, किसमें भक्ति भाव है
1: जी।
2: तो वो एक अलग एस्पेक्ट था। और अब जो महिलाएं बंदिशें बनाती है उनके मन के भाव अधिकतर हमको उसमें दिखाई देते हैं
1: जी।
2: और उसके साथ में श्रृंगार और मधुर शब्दावली और अलग अलग मन की भावनाओं को प्रकट करना, व्यक्त करना, ये अधिकतर हमें दिखाई देता है आजकल की जो महिला रचनाकार बंदिशकार हैं उनके।
1: तो आज किन बंदिशकार की चर्चा आप करेंगे?
2: आज हम डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे जी के बारे में हम जानकारी बताएंगे और उनके द्वारा बनाई हुई बंदिशों को भी प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी जी ने संगीत की तालीम जयपुर अतरौली घराने की गायिका और उनकी माँ श्रीमती माणिक भिड़े जी से तालीम हासिल की, जो गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी की शिष्या थी। उसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर पई जी से भी संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त किया और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का उन्होंने रचनाओं का संकलन राग रचनांजलि के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है
1: जी।
2: और अनेक शिष्यों को आजकल वो तैयार कर रही हैं घराने की परंपरा के अनुसार, और अलग अलग शैलियों की शिक्षा भी वो प्रदान कर रही हैं
1: जी। तो जी, आज की इस कड़ी में किस राग की चर्चा की जाए?
2: आज अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिशों में से राग सोहनी में एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बेग मोरी सुधारो करतार
1: जी।
2: तो राग सोहनी का थोड़ा सा चलन मैं बताती हूँ और अनुजा आपके सामने वो बंदिश प्रस्तुत करेगी
1: जी। स्वागत है।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जो तान ली आपने इस बंदिश में, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत अंदाज हम सबको बहुत पसंद आया, और राग सोहनी पर आधारित ये रचना थी, अपने श्रोताओं को बता दें। अब कल्पना जी बताइए कि हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगी आप?
1: अब अश्विनी जी ने गाई हुई, अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिश आपको राग नंद में हम आपको सुनवाते हैं, मोहे करण देरे, ताल तीन ताल में
0: जी।

0: संगीत सरिता की आज की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे की। अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम कुछ और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के साथ हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं तलत महमूद और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ।

सोने की चिड़िया फिल्म के इस गाने से हमने शुरुआत की आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की। युगल स्वर थे तलत महमूद और आशा भोसले के, साहिर लुधियानवी की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत। साथियों, मखमली आवाज़ के मालिक तलत महमूद की आज पुण्यतिथि है, तो आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनके कुछ नायाब गीतों को हमने शामिल किया है। चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें संगीत है मदन मोहन का, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। पॉकेटमार फिल्म का ये गाना क्या कहता है, आइए सुने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें उससे पहले ये संदेश
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। साथियों, इन भूले बिसरे गीतों की मिठास एक सुकून देती है। इनका सौंदर्य, इनकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहेगी। चलिए एक और मीठा सा गीत सुन लेते हैं।
4: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पत्र फिल्म से, और स्वर थे लता मंगेशकर और तलत महमूद के, गुलजार की रचना थी सलिल चौधरी का संगीत।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: जी हाँ, इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया, एक छोटे से अंतराल का समय हो चला है, अभी हाजिर होते हैं।

मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, दिले नादान फिल्म का ये गाना आपने सुना। तलत महमूद, सुधा मल्होत्रा और जगजीत कौर के युगल स्वर थे। शकील बदायूनी की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: श्री रामचंद्र के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। जानिसार अख्तर के बोल थे, फिल्म का नाम था यास्मीन।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तलत महमूद का गाया नगमा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसका संगीत तैयार किया था नौशाद ने। अनिल बिस्वास का संगीत, प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म का नाम तराना।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के गाए इस युगल गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। तो ये था आज का सुविचार।

और अब आज का इतिहास डालते हैं एक नज़र 9 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। आज ही के दिन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ था। 1653 ईस्वी में आज ही के दिन विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद हुआ था। 1946 में आज ही के दिन यानी 9 मई को ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। पहली विद्युत टंकण मशीन बनाई गई थी आज ही के दिन 1975 ईस्वी में। और 2009 में आज ही के दिन नासा ने चांद पर पानी की खोज के टोही यान भेजा था।

अब डालते हैं एक नज़र 9 मई के दिन जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। 1540 में जन्म हुआ था आज के दिन महाराणा प्रताप का। ये मेवाड़ में सिसोदिया वंश राजवंश के राजा थे। 1866 में आज के दिन जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले का। प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री स्नेहमयी चौधरी का भी जन्म हुआ था आज के दिन सन 1935 ईस्वी में।

अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन हो गया था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरगे का निधन 1986 में हुआ था आज ही के दिन। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी निधन हुआ था 1955 ईस्वी में आज ही के दिन। प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे आज ही के दिन सन 1998 ईस्वी में। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अवसर की बात करें तो आज हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। बर्थ एनिवर्सरी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले का भी हम मना रहे हैं। श्रोताओं, पूरी दुनिया आज के दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मना रही है। यह एक वैश्विक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। श्रोताओं, हम बता दें कि यह दिवस साल में दो बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं एक खूबसूरत गाना और गाने के बाद हम नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। तो पहले आइए सुनते हैं ये गाना।

0: خوشحال.
1: श्रोता विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत। गीतकार थे हर्ष जयपुरी और संगीतकार शंकर जय किशन। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में अब आइए नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। श्रोताओं, इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कैमूर और रोहतास जिले की कुछ गतिविधियां।

पहले लेते हैं रोहतास जिले की कुछ गतिविधियां। आज शनिवार को जिला मुख्यालय सासाराम स्थित व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में फरियादियों की सुविधा के लिए कुल 16 बेंचों का गठन किया गया है। 16 बेंचों में से 2 बेंच नंबर 15 बिजली ऑफिस फजलगंज में कार्यरत रहेगा, जिसमें बिजली बिल एवं उससे जुड़े वादों का निपटारा कराया जाएगा। वहीं बेंच नंबर 16 जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय कैंपस में आयोजित होगा। इसमें जिला परिवहन पदाधिकारी की मौजूदगी में सभी प्रकार के लंबित ट्रैफिक चालानों को 50% छूट देते हुए उनका निपटारा किया जाएगा।

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद राज्य भर में चल रही राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। रोहतास जिला इकाई के पदाधिकारियों ने भी हड़ताल खत्म करने की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले के सभी राजस्व कर्मचारी 11 मई से अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटकर कार्य प्रारंभ करेंगे।

नासरीगंज प्रखंड के परसिया पंचायत सरकार भवन पर आगामी 19 मई को प्रखंड का पहला सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको ले उक्त स्थल पर सीओ अंचला कुमारी ने निरीक्षण किया और लोगों को उक्त शिविर को ले जागरूक किया। शिविर में प्रखंड सह अंचल संबंधित ग्रामीणों की सभी समस्याओं को सुनकर उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा।

श्रद्धा, अब लेते हैं कैमूर जिले की कुछ गतिविधियां। कैमूर में पहली कक्षा में नामांकित बच्चों के 3 माह का विशेष विद्यालय तत्परता कार्यक्रम चहक शुरू किया जा रहा है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से अकादमिक सत्र 2026-27 के तहत चहक मॉड्यूल लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नवनिहालों को स्कूल वातावरण से जोड़ते हुए पढ़ाई की प्रारंभिक तैयारी कराई जाएगी। जिले में यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक संचालित होगा।

दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल बांटी जाएगी। जी हाँ, कैमूर जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत 127 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दिव्यांगजनों की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सहभागिता में वृद्धि होगी। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अब डालते हैं एक नज़र मौसम पूर्वानुमान पर। रोहतास और आसपास के क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थलों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75%, दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और अब कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं एक और गाना, और गाने के बाद कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो पहले सुनते हैं ये गाना।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओ, विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में तीसरी कसम फिल्म का गीत। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जी किशन का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब आइए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर नजर डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो आज भी हमारे पास है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समाचार पत्र। सभी अखबारों ने शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के सीएम पद के शपथ ग्रहण को लेकर समाचार दिया है। हिंदुस्तान लिखता है शुभेंदु अधिकारी संभालेंगे पश्चिम बंगाल की सत्ता। वहीं दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में शुभेंदु बने भाजपा के पहले अधिकारी, आज होगा शपथ ग्रहण। कोलकाता में शाह की मौजूदगी में चुना गया भाजपा विधायक दल का नेता।

और प्रभात खबर इसी खबर को लिखता है, शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए सीएम, शपथ ग्रहण समारोह आज। प्रभात खबर ये भी लिखता है, तमिलनाडु में एक्टर विजय का मुख्यमंत्री बनना तय।

अब डालते हैं एक नज़र कुछ अन्य समाचारों पर। दैनिक भास्कर अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, मौसम का कहर, पटना में 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी, भारी तबाही। 30 मिनट का तांडव तेज आंधी से पटना में उखड़े 150 पेड़, 5 मौतें। दैनिक भास्कर की अगली खबर है, चीन ने स्वीकारा ऑपरेशन सिंदूर में की थी पाकिस्तान की तकनीकी मदद।

दैनिक भास्कर ये भी लिखता है, उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, राज्य के विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया डिजिटल होगी और इसके तहत समर्थ पोर्टल से ही दाखिला होगी, कॉलेजों की मनमानी पर पूरी तरह से लगेगी रोक।

दैनिक जागरण लिखता है, बीएड प्रवेश परीक्षा 7 जून को नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। और इसमें पूछे जाएंगे 120 प्रश्न, 18 मई तक बगैर विलंब शुल्क कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन।

और हिंदुस्तान अपने प्रथम पृष्ठ पर लिखता है, शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्तियां जल्द जारी होगी। जी हाँ, चौथे

और खेल समाचारों में है राजस्थान और गुजरात मैच में दिखेगी रनों की बारिश। अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी दोनों टीमें। सिमरनजीत और साहिल ने भारत को पदक की दौड़ में बनाए रखा। तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता में तो श्रोताओं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

ये था हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर

0: डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने

0: इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज।

0: पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। देशभक्ति संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं नया दौर फिल्म से ये देशभक्ति गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों ने। साहिर की रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से ये देशभक्ति गीत, और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम सुन रहे हैं आप सबों की पसंद पर दो रास्ते फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, और इसे सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नरेन एस्टेट से हमारे श्रोता भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या, बीके मिश्रा और लल्लू पंडित। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहार नेवादा गाजीपुर से हमारे श्रोता है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर काला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे.
1: So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी. चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर दो कलिया फिल्म का ये गीत. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में

मेहर ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है रवि ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दा मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। जतू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी राज। सिराजपुर गणेशपुर से हमारे श्रोता हैं हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना परवीन, अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा तैमूर बाबू और नवासी हुमायरा नाज। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख और नुजहत जहानाज। कांति निकेतन राजनगर से हमारे श्रोता हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। और ये हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी और बुल्की वाली फलना झा। मोहल्ला भारतीगंज सासाराम से इसी गाने के लिए फरमाइशी पत्र लिखा है अरविंद कुमार, सुजीत कुमार, अजय, राजेश कुमार और आपके ढेर सारे मित्रगण ने। तो चलिए आप सभी के लिए हम पेश कर रहे हैं दो कलियां फिल्म का ये गीत।

दो कलिया फिल्म के इसी गाने को सुनना चाहते हैं। जमाने गाजीपुर से हमारे श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने भी

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। अब हम सुनवा रहे हैं सेहरा फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है रामलाल ने। इस गाने के लिए फरमाइशी पत्र भेजा है हमारे श्रोता कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकात परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन और बेबी अलीशा। और ये हमारे श्रोता हैं मंटू सिंह छपरा वाले। मालोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, मनोज महावीर सिंह और गुरचरण ग्रोवर। लुधियाना पंजाब से हमारे श्रोता हैं अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। और बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीवुल्ला फकीर, डब्लूल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर। तो पेश है आप सबों की पसंद पर सेहरा फिल्म का ये गीत।

और अब पसंद आपकी कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवा रहे हैं कटी पतंग फिल्म से एक गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जहिन तेंदुआ नबीनगर से, गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की और नीतू। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से हमारे श्रोता हैं भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। और ये हमारे श्रोता हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। नैका गांव सासाराम से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल। तो पेश है आप सबों की पसंद पर कटी पतंग फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में पटना केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रमुख संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े, एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत।
2: एडमिशन आधारित है जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों से अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और संबंधित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। पटना स्थित सचिवालय में मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य विभागों के मंत्री उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आज पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। यहां बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
1: इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित है उनके निपटान के लिए लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल की गई है। इसमें भुगतान नगद या UPI ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो DSP ट्रैफिक है उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप लोक अदालत में अपने जिले अंतर्गत जो हो रहे वहां पर आप उपस्थित रहे अनिवार्य रूप से।
0: ट्रैफिक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना सहित विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में इन मामलों की सुनवाई ज्ञान भवन में की जाएगी। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 25 बेंच का गठन किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन मालिकों को उनका वाहन सौंप दिया जाएगा। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के किसी भी थाने में दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे के दौरान नहीं मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 9031-829-356 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे 2,174 शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया है। विभाग के अनुसार 18 मई को इन शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। अगर किसी कारण से निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं हो पाती है तो अगले दिन काउंसिलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि विभाग के अनुसार BPSC द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए इस वर्ष फरवरी महीने में 6 से 11 तारीख तक तिथि निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारण से इन शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं हो सकी थी। पटना स्थित IGIMS नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से जारी नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है। कॉलेज के उपनिदेशक सह प्रवक्ता डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर छात्राओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया।

0: वहीं इस घटना के बाद कॉलेज की उप प्रधानाचार्य रूपाश्री दास गुप्ता को अकादमिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी से हटा लिया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल के टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इस संबंध में शिक्षा विभाग को पीएम पोषण योजना के समुचित अनुश्रवण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमार स्कूली बच्चों का समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

0: पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, सारण, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों ठप हो गया। पटना जू में भी कई पेड़ गिर गए। प्रशासन ने गिरे पेड़ों को हटाने के लिए आज पटना जू को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने पेड़ गिरने या बिजली के तार टूटने की तत्काल सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9470001389 जारी किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना और वैशाली में 2-2 तथा आरा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह विभाग ने छापेमारी में असहयोग के आरोप में कटिहार सदर 2 के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इधर पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गौनाहा थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवादा जिले की साइबर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कोनिया मोहल्ले से एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ठग के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1028 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना की कृषि अनुसंधान परिसर में सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खाद अपनाने की जानकारी दी गई। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान स्थित कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम आज से स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्कनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के रथौस गांव निवासी शम्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी जापान में होने वाले आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 मई से आयोजित की जाने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन पर ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता। दैनिक जागरण लिखता है, मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर आतंकी कैमरा, जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ। प्रभात खबर का शीर्षक है, ठगी साइट तक पहुंचाने को सरकारी पोर्टलों का सहारा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा अपने अपने

0: भागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल।
8: हम आकाशवाणी के साथ आरंभ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसके अंतर्गत हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज दिन भर और रात 11:10 तक प्रसारित और रिले होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। 10:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। सुबह 10:05 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विकास के सोपान। और 10:30 लोकमाधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। 10:45 पर सुनिएगा रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। दिन के 11:00 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम की सभा में श्यामध्या 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी और संध्या 6:00 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी।

संध्या 6:30 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। सांझ गीत और शाम 7 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा ममता का आंचल। संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 से आप सुनेंगे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद, और रात्रि 7:45 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और रात्रि 9:15 बजे गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 9:30 बजे हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम छाया गीत और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। रात्रि 10:30 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।

गीत मालिका कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था शराबी फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था बप्पी लहरी ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं बोल राधा बोल फिल्म से, और इस गाने को गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। रचना है समीर की और धुन आनंद मिलिंद की।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी सासाराम से समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। अब लीजिए सुनिए धर्मात्मा फिल्म का एक गीत किशोर कुमार की आवाज में। रचना है इंदिवर की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

और गीत मालिका कार्यक्रम के अंत में हम सुना रहे हैं छोटा सा घर फिल्म का ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। इस गीत को भी लिखा है इंदिवर ने और संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

छोटा सा घर फिल्म के इस गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे थोड़ी देर में विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में HMV के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: मजबूर।
1: सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने

0: मौजूद लगभग हर तरफ गली नाली पक्की देखने को मिली, लेकिन नाली की सफाई का अभाव दिखा। गांव में बिजली के पोल पर कवर्ड तार भी दिखाई पड़ा। गांव के पास ही प्राथमिक तथा उच्च विद्यालय भी है, जहां गांव के बच्चों को पढ़ने की सुविधा है। श्रोताओं, ये तो रही नोखा प्रखंड स्थित पंचायत ग्राम हथिनी की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली, गली, पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा के बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहां रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया पंचायत ग्राम हथिनी के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के नोखा प्रखंड अंतर्गत पंचायत ग्राम हथिनी में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के नोखा प्रखंड अंतर्गत पंचायत ग्राम हथिनी में उपस्थित हैं और हमारे साथ हथिनी के कुछ ग्रामीण हैं। आज हम जानेंगे कि गांव में विकास की क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं का लाभ यहां रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है। तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें।
1: हमारा नाम बीरेंद्र सिंह हुआ, गांव हथिनी हुआ।
0: ये बताइए कि हथिनी कितने घरों की बस्ती है?
1: लगभग 400-450 घर।
0: कितने वार्ड हैं यहाँ पर?
1: यहाँ 5 वार्ड है।
0: ये तो काफी बड़ा गांव है।
1: हाँ, गांव तो बड़ा है।
0: गांव में नाली गली की क्या स्थिति है?
1: गली तो लगभग बन चुका है, यहाँ नाली भी बन चुका है, लेकिन नाली ठीक हालत में नहीं है। यहाँ सफाई कर्मी का बहाली तो हुआ है, लेकिन सफाई कर्मी अपना काम नहीं कर रहे हैं। बरसात जब होता है तो गली के मतलब चारों तरफ से पानी ऊपर से बह रहा है।
0: और बात की जाए बिजली के यहाँ पर, तो आप लोगों को बिजली भरपूर मिल रही है?
1: नहीं, समस्या है बिजली का। बिजली का समस्या है, हमारा पावर ग्रिड एक गांव के जस्ट बगल में है, और जब लाइन कटता है तो इसका कोई माई बाप नहीं है, 2-3 दिन लाइन गायब रहता है। अभी स्थिति है कि खोजिएगा तो मोमबत्ती नहीं है किसी दुकान में, किरासन तेल भी नहीं है, तो मोमबत्ती दुकान पर से खरीदता है तो कितना खरीदेगा। तो
0: बिजली में छूट आप लोगों को मिल रही है जो सरकार के तरफ से निर्धारित है?
1: वही 125 यूनिट जो बिजली मिलता है।
0: और बताइए पीने वाला पानी, यहाँ पर जो नल जल योजना सरकार ने शुरू किया था, उसका लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है कि नहीं?
1: 0% चालू नहीं है। पाइप उस समय तो बिछ गया, लेकिन कहीं पाइप टूटा है, कहीं कुछ है, मोटर चालू नहीं होता है, सप्लाई नहीं आता है।
0: यहाँ पर नल जल योजना के तहत कितने टंकी लगे हुए
1: हर वार्ड में?
0: किसी वार्ड में अभी चालू है कि नहीं?
1: नहीं, कहीं नहीं चालू है,
0: सब अभी बंद हालत में है।
1: सब बंद हालत में है।
0: कि इस समय गर्मी में समस्या नहीं होती है आप लोगों को?
1: समस्या होती है, समस्या होती है। मान लीजिए हमारा चापाकल फेल कर गया तो अगल बगल में किसी के यहाँ समरसेबुल चल रहा है तो वहाँ से आ रहा है, नहीं किसी का कल है तो चल रहा है तो वहाँ से पानी आ रहा है।
0: ये बताइए कि शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है?
1: शिक्षा के लिए स्कूल है, सरकारी विद्यालय, मध्य विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है।
0: नहीं, आपके ही गांव में है?
1: हाँ, गांव में है।
0: सरकारी विद्यालय माने प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल?
1: हाँ हाँ है।
0: क्या स्थिति है वहाँ?
1: वहाँ विद्यालय का स्थिति ठीक है मिला जुला करके।
0: और आंगनबाड़ी केंद्र?
1: आंगनबाड़ी केंद्र भी है।
0: अच्छा, ये तो कुछ विकास की बातें रही, ये बताया जाए कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं?
1: अभी हमारे यहाँ जन वितरण प्रणाली का दुकान नहीं है, तो दूसरे गांव में से लोगों को आना जाना पड़ता है, तो उससे कुछ दिक्कत पड़ता है।
0: मिलता है ना लोगों को?
1: हाँ, मिलता है।
0: और आवास योजना का लाभ यहाँ लोगों को मिला हुआ है?
1: आवास योजना का लाभ तो मिलता है, देखते हैं कि नहीं किसी किसी का आया है, बन रहा है।
0: और कुछ योजना का लाभ लेते हैं, जैसे कृषि कार्य अगर आप करते होंगे, खेत अपनी होगी तो कृषि सम्मान निधि दी जाती है, 2,000 रुपये, 6,000 आते हैं।
1: हाँ, कृषि सम्मान निधि पात्र लोगों को मिल रहा है। हाँ,
0: आप भी उसके पात्र हैं, आपके घर में भी?
1: हाँ हाँ, मिल रहा है।
0: क्या कहना चाहेंगे गाँव के विकास के बारे में? अभी तक जो हुआ है
1: विकास हुआ है, लेकिन संतोषजनक नहीं हुआ है। यही पेयजल का व्यवस्था हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, नाली का व्यवस्था हुआ है लेकिन उसका सर सफाई वगैरह टाइम से नहीं हो रहा है।
0: जी, धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मदन तिवारी।
0: क्या करते हैं आप?
2: खेती।
0: यही हथिनी कराने वाले हैं?
2: हाँ, हथिनी कराने वाले हैं।
0: क्या स्थिति है खेती के लिए? आप लोगों को जो सुविधाएं पानी की चाहिए वो मिल जाती है?
2: एकदम बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
0: क्या नहर तो आपके बगल में है ना, नहर का
2: सफाई सर सफाई नहीं हो रहा है इसका?
0: नहर से आने वाला जो करहा है बाहर, वह साफ नहीं है?
2: साफ नहीं, बिजली पंप से पट रहा है।
0: गेहूँ के समय ज्यादा ये तो होती होगी?
2: पूरी सीजन धान हो, खरीख हो, या मैंने
0: धान में भी समस्या हो जाती है?
2: यही समस्या है जो गेहूँ में, वो भी धान में भी है।
0: किसानों के लिए यहाँ पर समस्या
2: बहुत बड़ी समस्या है।
0: गाँव में विकास की क्या स्थिति है अभी?
2: गांव का विकास का स्थिति नॉर्मल।

0: है, नली गली कोई सफाई नहीं हो रहा है। मान नली जो है भरा हुआ है कचरा, तो इसी तरह से भरा हुआ है।
1: पीने वाला पानी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है?
0: बिल्कुल नहीं,
1: चालू ही नहीं है?
0: चालू है लेकिन बिल्कुल बंद है। टूटा फूटा जो पाइप है उसका एकदम मैंने चलिए नहीं रहा।
1: तो यहाँ तो 5 वार्ड है, पांचों वार्ड में स्थिति,
0: 5 वार्ड 10 वार्ड का मान लीजिए हम रहने वाले हैं, 10 वार्ड में तो हम पानी नहीं देखे कि कभी मैंने इस पानी आया,
1: मैंने पानी चालू ही
0: चालू हुआ कि नहीं, हम देखे भी नहीं किए कि हमारे यहाँ कभी आया।
1: बिजली की क्या स्थिति है? आप
0: बहुत खराब स्थिति है इस समय।
1: जो छूट सरकार से मिल रही है बिजली में,
0: वो तो मिल रहा है।
1: ये बताइए कि यहाँ पर आसपास में कोई स्वास्थ्य सुविधा के लिए है साधन, जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो आसपास कहाँ जाना पड़ता है?
0: बराव, बराव
1: बराव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जाना पड़ता है। है व्यवस्था वहाँ पर,
0: लोग रहते हैं, व्यवस्था है
1: जी। ये बताइए आप कृषि कार्य करते हैं, सरकार के तरफ से जो योजनाएँ चलती हैं उसका लाभ मिलता है?
0: मिलता है।
1: कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं?
0: लेते हैं।
1: आपकी उम्र कितनी है अभी?
0: उम्र 55 साल।
1: आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य भी हैं?
0: नहीं, वृद्ध सदस्य
1: पेंशन योजना का लाभ लेने वाले
0: कोई नहीं है
1: जी। राशन कार्ड वगैरह का लाभ मिल रहा है कि नहीं? आप हैं कि नहीं पात्र?
0: प्रॉपर हमारा मिल रहा है व्यक्ति,
1: समय से मिल जाता है?
0: समय से लेकिन 4 केजी मिल रहा है, 5 केजी मिलना चाहिए, जो 4 केजी।
1: धन्यवाद। श्रोताओं एक युवा से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं, क्या नाम है आपका?
2: मेरा अनु चंद्रवंशी नाम है।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: हथनी निवासी हैं, हम हथनी गांव के रहने वाले हैं।
1: क्या करते हैं आप?
2: हम स्टडी करते हैं।
1: किस कक्षा में?
2: अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं।
1: ये बताइए गांव में क्या स्थिति है अभी?
2: यहाँ रोड से लेकर नली तक वही है, नली बना हुआ है फिर भी नली एकदम जामे जाम है। अब बरसात का दिन आ रहा है, अब यहाँ पे इतना घुटने भर पानी में बच्चे जाएंगे स्कूल उस वाले रोड से जो मेन गांव का है हाई स्कूल, उधर का रोड भी वही है, सब खंजड़ी कर दिया है। अब उस बिटा जो नहीं भरा हुआ है, रेबिस बिछा के छोड़ दिया है, रोड भी नहीं बनाया है, और बरसात में अब तो और गंदा हाल हो जाएगा।
1: मतलब पक्कीकरण नहीं हुआ उसका?
2: नहीं, उसका तो पक्कीकरण भी नहीं हुआ। और सौर ऊर्जा की बात करें तो हमारे 13 वार्ड में 3-4 लाइट आया है लगाने के लिए हर कॉर्नर पे, तो वहाँ पे नहीं लगाया, वहाँ पे अपने आप को मतलब वहाँ से खोल के एक जगह से अपने द्वार पे जबरदस्ती लगाया गया है।
1: जहाँ चाहिए वहाँ नहीं लगाया?
2: वहाँ नहीं लगाया, वो अपने घर के पास ले जाकर लगा दिया गया है।
1: कोई व्यक्ति लगाया?
2: हाँ, पर्सनल। तो हम लोग का यही कहना है कि जैसे सरकार उस पर ध्यान दे कि जहाँ पे लगाया जाए वहाँ पे थोड़ा व्यवस्था टाइट रखे
1: जी,
2: मतलब बीच बीच में कभी चेकिंग करना जरूरी है उसका।
1: नहीं, लाइट वहीं लगाई जाती है जहाँ चौक चौराहा हो, जहाँ पर ज्यादा लोग पाने जाने।
2: सब अपने अपने द्वार पर लगाए हैं ना, कि मतलब मेरा घर मेरे द्वार पे अंजूर रहे
1: जी। क्योंकि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय की स्थिति अभी क्या है आपके यहाँ? तो प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक
2: स्थिति पहले से बहुत अच्छा है, और प्राइवेट से भी अच्छा पढ़ाई चल रही है हमारे सरकारी स्कूल में।
1: इसके लिए प्राइवेट से भी अच्छा?
2: हाँ, चल रहा है, तो पहले से बहुत बेटर है। हम लोग जो निकल गए हैं, पहले तो हम लोग देखते नहीं थे कि स्कूल से कितने बच्चे क्या थे क्या नहीं, अब तो स्कूल में सौर ऊर्जा से लेकर हर चीज का व्यवस्था हो गया है, बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा।
1: तो एक बात बताइए कि यहाँ पर जो गार्जियन है, अभिभावक, यहाँ रहने वाले लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं कि नहीं इतनी सुविधा होने के बाद?
2: भेजते हैं। अब जिस जो बड़े लोग हैं वो जो प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं वो तो प्राइवेट में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो लो क्वालिटी के लोग हैं वो अच्छे से अपने स्कूल में भेजते हैं।
1: फिर लो क्वालिटी की बात मत की, यहाँ पर विद्यालय में बढ़िया स्थिति है तो हर किसी को भेजना चाहिए।
2: नहीं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो घर का एजुकेशन है, जो लोग सोचते हैं कि हाँ,
1: ये कहिए कि मानसिकता नहीं बदल पाए हैं लोग, विद्यालय में व्यवस्था बढ़िया हो जाने के बावजूद भी लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना
2: चाहते हैं, लेकिन बाकी सब तो बढ़िया ही है स्कूल में, स्कूल बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, ये बताइए कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ आपको आपके घर के सदस्यों को मिल रहा है कि नहीं?
2: हाँ, वो मिलता है, राशन का लाभ मिलता है।
1: राशन कार्ड वालों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ मिलता है? बना हुआ है?
2: बना हुआ है शायद, मम्मी का, हम लोग का भी शायद बना है।
1: सबका बना होगा? हाँ, तो जितने राशन कार्ड?
2: हाँ, बना है, हाँ बना है,
1: होता है उसका, बनता है। और घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं वृद्ध जो 60 साल से ऊपर?
2: नहीं नहीं, कोई नहीं है।
1: पेंशन योजना का लाभ
2: नहीं?
1: कॉलोनी भी मिली हुई है?
2: कॉलोनी मम्मी के नाम पे मिला था, बहुत पहले मिला था।
1: पहले कॉलोनी
2: जो 70,000 वाला था मिला था?
1: कॉलोनी मिली हुई थी।
2: हाँ,
1: तो अभी जो गांव की स्थिति है इसमें क्या अभी समस्याएं कुछ ज्यादा है?
2: समस्याएं ज्यादा ये है कि रोड नली गली इसका ज्यादा है, कि जहाँ पे देखिएगा कूड़ा कचड़ा नली भरा हुआ है, आप इसी गली में जाइएगा तो देखिएगा इधर से इतना नली भरा हुआ है।
1: सफाई होनी चाहिए?
2: हाँ, सफाई होनी चाहिए, रोड पक्की होनी चाहिए, हर गली मतलब जो कॉर्नर पे है वहाँ पे लाइट साइट की व्यवस्था रहनी चाहिए।
1: पीने वाला पानी भी तो आप लोगों को नहीं मिल रहा है?
2: नहीं, वो तो हमारे 13 वार्ड में स्टार्ट होते ही बंद हो गया है, उसका मतलब लाभ ही नहीं मिला शुरू से अंत।
1: धन्यवाद। श्रोताओं, नोखा प्रखंड स्थित पंचायत ग्राम हथनी के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको सुनवाते हैं एक गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत के सुरों में ढाला है लक्ष्य।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए चलते हैं ग्रामीणों के बीच। हमारी बात हो रही है रोहतास जिला के नोखा प्रखंड अंतर्गत पंचायत ग्राम हथनी के लोगों से और जान रहे हैं हथनी में हुए विकास कार्यों के बारे में। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजय सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: हथनी।
0: हथनी तो पंचायत ग्राम है।
1: जी जी जी।
0: ये बताइए आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है?
1: स्थिति जो है ना कि हर एक मोड़ पर जो है कि रास्ता जो है वो थोड़ा सक्रिय है, जमीन काफी है, लेकिन जो अगल बगल से ओटा फोटा जो देहाती भाषा में बोलते हैं काफी करके बांधे हुए हैं, बोलने पर झगड़ा झंझट के नौबत लग जाता है।
0: यानी कि अतिक्रमण कुछ
1: एकदम साफ होना चाहिए, एकदम गांव में तो बिल्कुल ही साफ होना चाहिए।
0: यहां पर शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बढ़िया है?
1: बिल्कुल, नीतीश जी के शिक्षा जो है बहुत बढ़िया, बीपीएससी टीचर बहाल किए, मैंने बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पहले से बेहतर है।
0: अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, यहाँ पर लोगों को कुछ लाभ मिला हुआ है?
1: जैसे नल जल था तो स्टार्ट तो हुआ, लेकिन पानी नहीं दे पाया, सफल नहीं हो पाया।
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं एक फार्मर हूँ।
0: कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है?
1: मिलता है।
0: तो उसका उपयोग खेती में हो जाता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल करते हैं
0: जी। धन्यवाद। आइए एक अगले ग्रामीण से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा तो नाम काशिंद्र तिवारी है।
0: जी, तो आप हथनी कहीं रहने वाले हैं?
2: जी।
0: किस वार्ड में रहते हैं?
2: 10 वार्ड।
0: पूरे गांव की बात की जाए, क्या स्थिति है अभी?
2: पूरे गांव की बात तो कहना जाए तो नली जतन साफ करने वाला सबसे पहले है, तो साफ नहीं होता, जहाँ बाहर है वही पड़ा हुआ है, जो अपने जो बाहर बाहरते हैं वही पड़ा हुआ है, उसको जतन उठाने ना उठाने वाला कोई आए ना, नली कभी साफ होता है ना होगा।
0: सफाई की कमी है?
2: सफाई की सबसे जबरदस्त कमी है। अब पानी वाला तो कहा ही ना जाए, पानी वाला तो वही शुरू हुआ बस बंद हो गया सब,
0: पेयजल मिल नहीं रहा है
2: ना। वो तो
0: गर्मी में और समस्या होती होगी।
2: हाँ हाँ, यहाँ तो और समस्या और दिनों दिन बढ़ेगा।
0: कितनी उम्र है आपकी?
2: 73 वर्ष।
0: तो सरकार के तरफ से कुछ योजनाएं चलती है, उसका लाभ आप ले रहे हैं?
2: योजना तो कोई नहीं मिल रहा है।
0: पेंशन योजना का लाभ नहीं लेते?
2: योजना मिल रहा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है।
0: आपको मिल रहा है कि नहीं?
2: हमारा मिल रहा है अभी 10 साल से।
0: आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं ना?
2: ना नहीं बनवाए।
0: तो आपको तो बन जाना चाहिए, 70 साल से ऊपर कर रहे हैं तो 70+ का।
2: आधार कार्ड में तो कम दे दिया है।
0: आधार कार्ड में कितना है?
2: आधार कार्ड में अभी जतन 63 चल रहा है, 64।
0: तो फिर पेंशन योजना का लाभ कैसे ले पाते हैं 10 साल
2: के बाद? तो जतन
0: 60 के बाद ना?
2: हाँ, तो 60 के बाद से नहीं कहे कि मिल रहा है,
0: 4 साल से ले रहे हैं।
2: बढ़ोली ना, 3 साल से कमे हुआ होगा।
0: जी जी, मतलब कि जो पूरा हुआ आधार कार्ड के अनुसार उसी आधार पर आपको मिल रहा है। खेती वाली जमीन होगी तो कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ भी आपको मिलता है कि नहीं?
2: ना, नहीं मिल रहा है।
0: क्यों, क्या दिक्कत?
2: इसलिए कि जतन जिसके नाम पर है उसी के मान लेके, तो सब कोई का कागज थोड़े है, परिवार में जतन एक मालिक है उन्हीं के नाम से आए, बाप दादा जो है उन्हीं के नाम से आए।
0: तो परिवार में किसी को मिल रहा है?
2: एक बड़े भाई का जतन अभी जतन लोग किया है तो मिलता होगा
0: जी, क्योंकि बंटवारा न होने के चलते दिक्कत हो रही है।
2: मिलना चाहिए, जब उसमें अंश है तो मिलना चाहिए ना।
0: किसानों के लिए पानी की क्या लोग बता रहे हैं यहाँ पर समस्या? नहर वाली पानी?
2: हाँ, नहर वाली समस्या तो बताइए रहे हैं कि वही जहाँ से निकला है उसके आगे आता है वही नाला है, वही उसी नहर में फिर गिर जाता है।
0: इधर आप लोगों की तरफ पानी
2: ना नहीं आ रहा है? तो यहाँ बिजली पर ही खेती है, बिजली भी तो मनमानी है। अभी आए हैं, अभी जतन आ रहा है बिजली, संजोग से आप देख रहे हैं कि बिजली मिला हुआ है
0: जी। तो हम तो आए तो देखे बिजली है, तो हमें लगा कि बिजली
2: बिजली का सबसे दयनीय है
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं, अगले ग्रामीण से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: पवन सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
3: जी, हथनी ग्राम के।
0: क्या स्थिति है आपके गांव की?
3: मेरे गांव की स्थिति बहुत जर्जर है, स्थिति है अभी सर सफाई के लेके लोहिया स्वच्छ विभाग के जो हमारे कूड़ादान उठाने वाले हैं, जाके देखिए 10 नंबर वार्ड में कितनी गड़बड़ी है, कितनी कचरा है, गंदगी है। सर सफाई चल के देख लीजिए क्या है, गली में कचरा रहेगा, ठेला वाला आएगा। हमारे 10 नंबर वार्ड में पूरा नली को पाट दिया गया, खाली माने पाटने का नाम है उसको, कुछ नहीं, चल के देख लिया जाए। उसमें ना पूरा लंबा लंबा स्लेप डाल दिया गया, नली को पाट

0: दिया गया, पूरा टूट गया, फंस गया, थोड़ा दूर पूरा नहीं हुआ। 10 नंबर वार्ड में पेयजल का नल जल हुआ, उसके बाद में मोटर कभी चला नहीं। सरकार पंचायत भवन बना हुआ है, कभी कोई ऑपरेटर कोई बैठता है वहाँ?
1: ये बताइए, कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ आपको आपके
0: कुछ परिवार? नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता है। हमारे पास 1 बीघा जमीन है, इतने लोग से पूछ लीजिए, मात्र 1 बीघा।
1: तो आपको सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिलता है?
0: कोई लाभ नहीं।
1: किसान सम्मान निधि
0: जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
1: और राशन कार्ड?
0: कारण कि मेरे पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये नहीं बोले कि राशन कार्ड नहीं है।
1: उसका लाभ?
0: और हाँ,
1: घर में कोई वृद्ध सदस्य भी हैं, बूढ़े लोग?
0: नहीं, बूढ़ा नहीं, पापा हैं तो 70 साल के हो गए।
1: उनको पेंशन योजना का लाभ मिलता है?
0: जी हाँ, उनको मिलता है। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मिलता,
1: उनको मिलता है।
0: जी जी, उनको मिलता है।
1: जी जी, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे नोखा प्रखंड स्थित पंचायत ग्राम हथनी के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के नोखा प्रखंड अंतर्गत पंचायत ग्राम हथनी में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों, या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisassaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। आरंभ में लीजिए सुनिए मेहदी एल्बम से शारदा सिन्हा के स्वर में ये पारंपरिक रचना, और यह है विवाह गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब लोकमाधुरी कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं मुन्ना सिंह के स्वर में ये निर्गुण भजन।

इस निर्गुण भजन के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सासाराम है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत एल्बम्स, सॉन्ग्स। और ये एल्बम सॉन्ग्स हमने लिया है भोजपुरी एल्बम से। आइए सुनते हैं।

किरण पांडे की आवाज में आप सुन रहे थे तारकेश्वर मिश्रा राही की यह रचना। अब लीजिए सुनिए तनु प्रियंका के स्वर में राजा राजेश तिवारी की यह रचना। बोल है कुह के करेजा।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: रसधार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना। गायक कलाकार है राजेश तिवारी रतन, रचना है कुलदीप सिंह की और संगीत अनमोल अनिल का।

0: राजेश तिवारी रतन के गए इस हनुमान भजन के साथ ही रसदार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। अब हम कुछ पलों में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिरिठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो

ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए, उस तो आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है.

सुरैया की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज़ भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों, हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बेहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें, 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बेहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों, ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज़ के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज़ दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहां गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे।
4: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज़ के बीच के प्यारे पल को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है, वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा हो

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करी जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एस एन राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4थे और गुजरात 5वें नंबर।

0: पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

आंखों में सपनों की बारात झूम।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।

सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमाने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ भारती पर।
1: जाने

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज़ तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत। तलत महमूद की आवाज़ है और ये फिल्म है दिले नादा।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ हैं ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की, कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस

पर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है। वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं मेरा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहाँ नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियाँ इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का ये गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम।

में स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटा पटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राजा राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला ये कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजड़े वाली मुनिया।
1: जी, इस गीत से हमने लिया है शब्द मुसाफिर।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

के सब रस ले लिया।

जी, तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाज़ें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज़ को मिलजुल कर आवाज़ दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चलें। बिल्कुल चलें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार हैं आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीज़ों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज़ देता, न किसी चौखट पर उसका इंतज़ार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज़ थी जिसमें अपनापन था, एक नज़र थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आँखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूं।

एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार। गीत की फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है?

0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज़ दी थी अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज़ है, प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज़ है और उनका साथ अमीर बाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी और देखिए आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज़ क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज़ थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज़ नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया,

बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिले भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया।

आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कन्फ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नृत्यकियाँ थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा, कड़वा कसेला, सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसलिए तो इस सूर्य का सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहाँ इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूँ सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अपना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के पिकरेट परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री

शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10,10,000 से अधिक परिवारों के 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से अधिक परिवारों के लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली बाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम बाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई हो रही है। 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठों का गठन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सिवान जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 अन्य घायल हो गए। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल हुए वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने महिला विक्रेता समेत 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू।

लगने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई। हिलाक होने वाला तालिब इल्म मुंबई का रहने वाला है। वैशाली जिला के महनार जंदाहा मेन रोड पर योगी बाबा स्थान के करीब दो मोटरसाइकिलों के दरमियान होने वाले तसादुम में एक नौजवान जहां बहक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स अथवा 2 या 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती के लिए योग्य आरक्षक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। ग्रुप सी के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए

0: त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका मिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव

0: बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की 2री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण

0: के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू अड्डे के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत तो प्यारे लाल की थी।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: कैसे हैं?
1: मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम गंगा जमुना, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की धुन।
0: होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार,

आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: क्या है? अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल

0: अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें।

0: है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज़ किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है डाक।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
1: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
0: अरे भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
1: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
0: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
1: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
1: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
1: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
1: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाड़े लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
1: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: पोस्टमैन चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंद स्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना

0: कंदस्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर है।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गयी है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंदस्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वो छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4

0: हजार रुपए अपनी माँ को भेजता है, अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मुहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई शिंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है? अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: शिंगारम, हाँ? शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम शिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम शिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
0: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ लाओ।

0: लाओ लाओ लाओ
1: सिंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
0: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
2: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ। देखना ये सिंगारम के

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे, जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारक? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने?
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: मैंने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करो, सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा, ये बात है?
0: छोड़ दे, छोड़ दे।
3: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चारों हाल उधर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
2: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने श्रृंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश श्रृंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं, मैं जा

0: करती हूँ। समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब, ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
1: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: है ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई?
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: सुनहरी यादें। जी हाँ, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के ज़माने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊँगी।
0: जी,
1: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं

0: इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
1: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
0: जी,
1: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
0: हाँ।
1: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली।
0: हाँ,
1: तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
0: वाह।
1: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
0: हाँ।
1: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
0: जी जी जी,
1: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
0: हाँ।
1: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
0: वाह वाह।
1: जी,
0: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी?
1: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
0: जी,
1: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
0: क्या बात है।
1: जी,
0: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता
1: मुहूर्त
0: है।
1: माना,
0: क्या बात
1: हमारे
0: है।
1: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे
0: हाँ
1: जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है,
0: जी
1: गुड़ी
0: जी
1: पाड़वा।
0: क्या बात है।
1: जी,
0: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
1: हाँ,
0: थी।
1: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी से के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था। वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
0: जी जी
1: मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ, वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कुणा से, वो जो गाना है
0: जी
1: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कुणा से। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
0: जी
1: मेरी एक पोती वहाँ रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
0: अच्छा
1: बोली
0: अच्छा
1: तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी।
0: क्या बात।
1: बहुत मजा आया
0: वाह
1: उससे,
0: वाह।
1: बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
1: जी
0: हुआ,
1: जी
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
1: लिस्ट
0: आपको
1: बनाई
0: याद
1: थी,
0: है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
0: जी
1: क्या अजीब दास्तां है ये,
0: हाँ हाँ
1: इस तरह
0: हाँ
1: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
1: हाँ जी,
0: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
1: हाँ जी
0: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
1: जी
0: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, ज़रा मुश्किल है,
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
0: हाँ
1: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
0: ओह क्या बात
1: आई
0: है।
1: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
0: अलग अलग
1: गाना।
0: गायिकाओं ने
1: हाँ
0: अलग
1: जी,
0: अलग
1: हाँ,
0: मौके पे इसे
1: ऐसे मैं
0: गाया है।
1: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
0: हाँ
1: अलग अलग
0: हाँ
1: गायिकाओं के गाने हुए,
0: जी जी
1: उसकी झलक
0: हाँ
1: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
0: जी
1: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। अच्छा, मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई की
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे एक चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी, जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी, जी।
1: गाने की तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी, जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा। जी, जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी, जी,
1: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल
0: के ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला नहीं वो स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया।

0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
0: हाँ
1: दिल्ली गई
0: क्या
1: यूथ फेस्टिवल के,
0: अच्छा
1: बाकी
0: अच्छा अच्छा
1: फ्रेंड्स वगैरह थे
0: हाँ
1: साथ,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मज़ा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था
0: क्या बात है।
1: बहुत मज़ा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर,

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती,
1: पुरुष लोग तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
2: इस
1: नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटे से वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
1: जी,
2: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: और
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी।
1: अच्छा।
2: बच्चों को।
1: हाँ।
2: तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल के प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्हें पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी
1: दौड़ते
2: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
2: और दो बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ हाँ।
2: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
1: जी जी,
2: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके
1: जी,
2: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके। अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: तलत साहब के साथ गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का। उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा। मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी। तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में

0: संभालती थी कैसे भी करके,
1: अच्छा
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना। तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
1: अच्छा
0: दम मारो दम।
1: हाँ।
0: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी जी
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे
1: अच्छा
0: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया
1: हाँ,
0: उनको,
1: जी जी
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर सब घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
1: हाँ
0: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के इन
1: हाँ
0: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस बारे।
1: है।
0: रफी साहब
1: पर
0: को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं गाया
1: नहीं गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन
0: जरूर
1: सा होगा वो?

0: अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें,
1: अच्छा,
0: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
1: जी, जी।
0: तो ये जिनको मालूम नहीं कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है,
1: अच्छा,
0: हाँ मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, हाँ। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
1: जी।
0: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे, तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में, मेरी सब सहेलियाँ मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ रोज सुबह, मेरा ये काम होता
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया
0: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती हूँ।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो तुम तुम्हारा करके गाती हो।
1: हाँ,
0: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
1: जी,
0: गाने
1: जी,
0: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती है। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपने वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
1: क्या बात है।
0: भेजे।
1: अच्छा,
0: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, बजाता है मुझे भी अच्छा लगता है।
1: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का,
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे,
1: मोमो के धागे, दम लगा कर हैशा, इस फिल्म
0: दम
1: का
0: लगा
1: गाना
0: के
1: है
0: हैशा
1: जी,
0: उसका
1: गीत लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हारमोनियम पे,
0: मोह मोह के है।
1: तो
0: और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों की
0: टीका टिप्पणी की, आप जो आपका
1: टीका
0: कहना।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ,
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों टीका टिप्पणी, मतलब ये

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: है, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ
1: गीता
0: हाँ
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद
0: आशा
1: है
0: जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में
1: हाँ
0: भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज़ नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊँ,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज़ डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हूँ
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही लता
0: बिल्कुल
1: मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौबने
0: हैं,
1: में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी जी
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: सुनिए,
8: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी,
8: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
8: शुक्रिया, शुक्रिया।
9: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर ली।

दीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाक के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है।

0: को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में हमारी बात के अंतर्गत आप सुनेंगे पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की भूमिका, महाराणा प्रताप का संघर्ष और बलिदान, साथ ही खेल के मैदान से आपको जानकारी देंगे और आनंद लेंगे हिंदी फिल्म संगीत का। शाम 6:00 आपके लिए लेकर आएंगे हम कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज की बातें में आप वार्ता सुनेंगे, विषय होगा गृह वाटिका में कितने लाभप्रद, वार्ताकार होंगे डॉक्टर रीता सिंह। नई दौर नई बातें के अंतर्गत नील हरित शैवाल का प्रयोग कैसे करें, साथ ही पत्रोत्तर, बाजार भाव और मौसम पूर्वानुमान। भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझ गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:00 और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

रात्रि 9:15 पर। 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और रात्रि 10 से आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट तराने लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर और अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान आपको बताएंगे रात्रि 10:55 पर और रात्रि 11 से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और उसके बाद रात्रि 11:05 से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 7:25 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। शाम 7:50 पर आपको सुनवाएंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:45 से और रात्रि 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम महफिल हम आपके लिए लेकर आएंगे।

अभी आपने सुना हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत हमने आपको सुनवाया, जो वीन नौटियाल की आवाज़ में मनोज मुंशीर की रचना थी और संगीत दिया था पायल देव ने। और दूसरा गीत भी हमने आपको सुनवाया मनोज मुंशीर की, माफ़ कीजिएगा, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। और इस गीत को धुंधी राज आशु ने, बोल पारंपरिक थे।

0: Janak janak tagatha, janak janak tagatha. Jigar tagthi lang tum kit tagthati, tha tum kit tagthati, tha tum kit tagthati, tha. Thalikar tagthi lang tum kit tagtha, thalikar tagthi lang tum kit tagtha, thalikar tagthi lang tum kit tagtha.
1: नील रंजन मुखर्जी का संगीत, पारंपरिक बोल और आवाज़ आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की।

0: हर हर गिरिजापति महादेव।
1: श्रोताओं, में आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऊषा का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम युवानी में। कार्यक्रम युवानी में आज हम बात करेंगे हमारी बात के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की भूमिका वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड डे पर।

श्रोताओं, पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की भूमिका, विशेष रूप से जब कि आज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, प्रकृति ने इस धरती को संतुलित बनाए रखने के लिए हर जीव को एक विशेष भूमिका दी है और पक्षी इस संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सुबह की मधुर चहचहाट केवल मन को ही प्रसन्न नहीं करती, बल्कि यह स्वस्थ पर्यावरण का भी संकेत होती है। प्रवासी पक्षी यानी वे पक्षी जो मौसम और भोजन की तलाश में एक देश से दूसरे देश तक लंबी यात्राएं करते हैं, हमारे पर्यावरण की स्थिति को दर्शाने वाले प्राकृतिक संकेतक माने जाते हैं। यदि जल, जंगल और वातावरण सुरक्षित होंगे, तभी ये पक्षी अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे। पक्षी खेती और पर्यावरण दोनों के मित्र हैं। कई पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाकर प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाए रखते हैं। कुछ पक्षी बीजों को दूर दूर तक फैलाकर नए पेड़ पौधों के उगने में मदद करते हैं। यही कारण है कि पक्षियों की उपस्थिति जैव विविधता और हरित वातावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, जलाशयों के समाप्त होने और प्लास्टिक कचरे के कारण पक्षियों का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। कई प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। यह केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। खासकर हमारे युवा श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन तक ये संदेश

पेड़ लगाना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, छतों और आंगनों में पक्षियों के लिए पानी रखना, प्रकृति के लिए अपनी गहरी संवेदना को व्यक्त करना। आपके इसी व्यवहार से हम पक्षियों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। पक्षी सिर्फ पक्षी नहीं है, ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में एक मौन योद्धा की तरह काम करते हैं। प्रकृति के माली हैं ये पक्षी। बीजों को एक जगह से दूसरे स्थान तक लेकर पहुंचाकर और नए पेड़ पौधे उगाने में मदद करते हैं। किसानों के मित्र हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाकर प्राकृतिक कीटनाशक की भूमिका निभाते हैं। कांवड़ झील हमारे बिहार के बेगूसराय में स्थित है और कांवड़ झील का सबसे बड़ा उदाहरण एशिया की सबसे मीठे पानी की गोखुर झील होने के नाते हर साल मध्य एशिया से होकर आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों का ये स्थान बसेरा बनता है। इन पक्षियों की चहचहाट हमारी झीलों के जीवित और स्वस्थ होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इनका संरक्षण हमारी विरासत को बचाने में हमारा कर्तव्य है कि हम इस विरासत को, यानी पक्षियों के संरक्षण को, महत्वपूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाएं और इनके लिए संरक्षण के लिए हम नित्य अपने स्तर से, अपने घर से शुरुआत करें।

फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत था सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाज़ में। अनु मलिक का संगीत था और गीतकार थे जावेद अख्तर साहब। कार्यक्रम युवानी आप सुन रहे हैं और हमारी बात में आज आपको महाराणा प्रताप जयंती पर हम बता रहे हैं महाराणा प्रताप का संघर्ष और बलिदान। श्रोताओं, महाराणा प्रताप मेवाड़ के वीर और स्वाभिमानी शासक थे जिनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे अपने साहस, राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज्य और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक माना जाता है। उनका जीवन त्याग, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रेरणादायक उदाहरण है। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम साहस, स्वाभिमान और अदम्य संघर्ष के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। उनका जीवन हमें

सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हों, यदि संकल्प मजबूत हो तो व्यक्ति अपने आदर्शों पर अडिग रह सकता है। संघर्ष के दिनों में उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में कठिन जीवन बिताया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी वीरता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है, जिसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। युवा साथियों, महाराणा प्रताप का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा है। आज के समय में हमें उनके जीवन से ईमानदारी, साहस और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की सीख लेनी चाहिए। हमें अपने इतिहास और उन महान व्यक्तित्वों को याद करने का अवसर, जिन्होंने त्याग और संघर्ष के बल पर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया।

0: ए.आर. रहमान की आवाज़ में जावेद अख्तर साहब की रचना और संगीत दिया था ए.आर. रहमान ने। स्वदेश फिल्म का ये गीत था। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

बीपराग की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। और अब कार्यक्रम युवाणी में खेल के मैदान से। आत्मविश्वास से ओतप्रोत गुजरात टाइटंस शनिवार को यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मैच में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखकर अंक

तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात की टीम की स्थिति लगभग समान है। इन दोनों ने अब तक 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार दर्ज की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अपना 100वां गोल किया। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने सुपर रैपिड और बिल्टिस टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग में 9वें और अंतिम दौर में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआनो को हराकर संयुक्त 4था स्थान हासिल किया।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान बाड़ी सुनने वाले सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार और सुमन भाई रोहो के नमस्कार।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम और रनिया बहन रोहो का नमस्कार। रनिया बहन
0: जी,
1: देखी आज दिन में लागल है कि कितना गर्मी बा, तेज धूप बा, आ सांझ होते न पूछी मत के इतना तेज हवा पानी आवे लागल हो।
0: एक ही दिन के नहीं सुमन भाई, ये हमरा बुझा था कि लगभग रोजे दिना होखे लगा।
1: आये घरी लगन
0: सांझ के सांझ है, लगभग 4 बजे 3 बजे से शुरू होत बाटे। अंधड़ तूफान एकदम पूरा माने जितना भी देखत आने की आम जौन लगरल हो एकदम पर सुमन भाई, सब फसल फल जौन बाटे के एकदम बर्बाद हो गए, खत्म हो गए जौन भी फल फलहारी लगत बाटे।
1: जामुन रहल हो सब पहले एकदम माने पूछी मत, इतना तेज आंधी रहता न। आज देखनी है कि आवत रही जा तो कितना किसान भाई लोग के चेहरा पर आज खुशी भी देखे के मिलल हो। आज देखे राष्ट्रीय लोक अदालत लागल रहल
0: हो,
1: आ राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई मान ली कि कोई के बाप लेके किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेलन ना जमा हो पाओ, या कोनो कोई पहले पैसा लेलस, कोई किसान भाई लोग मजबूरी में ना जमा कर पौलन, अब अगर पहले सूद मूर जोड़ के कोई के 1 लाख अधिक हो गए रहे, कोई के 1.5 लाख अधिक हो गए रहे, 2-2 लाख तक पहुँचल रहे रनिया बहन, अब वो पैसा के पहले

0: कंप्रोमाइज करके दोनों बैंक का किसान भाई लोग आपस सहमति से, हमें कोर्ट के भी भूमिका बहुत बढ़ रहा है, आप मूलधन से भी कम राशि पर, बहुत कम राशि पर
1: बताए सरकार जो कितना बढ़िया व्यवस्था कैले बा सुमन भाई, कि जौन भी किसान भाई लोग हमनी के कर्ज से ले लेत बन, ओकरा से निवृत्त लेखा हो पावत, परेशान रहत बा ना कि भाई कर्जा कहाँ से दे पाई, मुरवे मुर कहाँ से दे पाई, कर्जा वे लिखे दिया था। तो भाई यह पर हमनी के सरकार को बहुत बड़ा नजर भी बाटे देखा रहल बाटे कि हमनी के

0: इसे पंचायत हो जाते रहे कि भाई चलो तुहु खुश इहो खुश, कोई नाराज ना रहते रहे। और ये लोक अदालत के सबसे बड़ खासियत है कि एक बार जब पंचायत हो गई तो ओकर कहीं पहले अपील और सुनवाई ना होके, अब वही जो मामला खत्म हो जाए। आ एकरा में इनका पारी जो नया विषय जो लाबल गई है ओमे परिवहन से संबंधित भी मामला रहे। देखले होखब आजकल तो फोटो खींच खींच के चलान चल जाता है घरे। कई किसान भाई लोग कहते रहे कि भाई हमार ट्रैक्टर बा ऊपर नंबर बा या गाड़ी के जो आवता फोटो तो ना पर कोई के मोटरसाइकिल के फोटो हमारे ट्रैक्टर के नंबर पर अपन मोटरसाइकिल के नंबर लिख दिले बा पकड़ा गया तो हमारा के चलान आवता। तो ऐसा कई जगह देखे के मिलता और कहीं 70,000 कहीं 1,00,000 रुपया तक के चलान हो जाता। इनका पारी बड़ा मने बढ़िया कि एकरा खातिर अलगे से एगो पहले परिवहन विभाग जितना चालान संबंधित समस्या रहे में हजारों आज केस सब फाइनल भइल हो, हजार के संख्या में ऊपर खाली खाली माने चालान के लेन देन के। बैंक से संबंधित तो पूछ ही मत, बैंक के सब माने धर धर के लोग निहोरा कर करके एक एगो समझौता लोग करता। और किसान भाई लोग खातिर इतना बढ़िया बा कि जौन पहले कर्जा से एक तो मुक्ति मिल गई, पहले अगर ये पैसा अगर सूद पर कोनो साहूकार से ले ले रहती तो रोज पहले 10 आदमी लेके दौड़ी, इज्जत प्रतिष्ठा सब ले। तो कम से कम हमनियों के चाहिए देखें रनिया बहन कि अगर संभव बा ये खराब है का होला ना कि एक बार और जब क्रेडिट खराब हो जाए तो फिर बैंक अगर समझौता तो कर ले, आगे अगर ऋण लेवे जाए तो पहले सोचे के पड़ी। तो हमनी के तो किसान क्रेडिट कार्ड अब जे नियमित करता के तो बहुत ही कम माने सूद पर ओकरा के मिल जाता। तो हमनी के चाहिए कि समय से ओकर पैसा
1: के भी भुगतान कर जाने के भी जरूरत बाटे, एकरा के भी माने समझे के बाकी हमनी के कैसे एकरा से निवारण कर सकेले जा, कैसे हमनी के मुक्त हो सकेले जा कर्जा से। तो बस खाली जागरूकता अपन रखे के बाकी कैसे जानल जाए, कैसे लोक अदालत हमनी के बहुत बढ़िया जगह बाटे, ओजा रुआ लोग जा करके लाभ उठाई जाए। आ सुमन भाई आगे हमनी के और ये बात कही कही जाए हो कभी करी। आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम में हमने के कोने कोने विषय पर बातचीत कही जाए और लाभ उठावा जाए यह पर हमने के जानकारी ले लिया जाए।
0: तो देखिए आज के हमने के सबसे पहले कार्यक्रम के शुरुआत के लिए आज की खबरें से कृषि संबंधी जौन भी खबर है वगैरह के सब श्रोता भाई लोग के बतावल जाए। एकरा अलावा आज की बातें में हमने के गृह वाटिका कितनी लाभप्रद यह विषय पर डॉक्टर रीता सिंह से वार्ता सुनल जाए। नई दौर की नई बातें में नील हरित सहवाल का प्रयोग कैसे करें यह पर हमनी के चर्चा हुई। पत्रोत्तर के भी कार्यक्रम रही, मौसम के पूर्वानुमान पर भी एक नज़र डालल जाए।
1: तो देखिए ये रहल हमने के

0: सुमन भाई, अब हमने के एक कृषि संबंधित कुछ खबर भी सुनल जा। देखिए खबर ही बा कि दरौंदा प्रखंड के कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान के कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध करावे आ सरकारी योजना से जुड़ल उद्देश्य से बिहार कृषि ऐप में पंजीकरण करावे के निर्देश जारी कई गई बाटे। कृषि निदेशक बिहार पटना के प्रतांक 327 दिनांक 21 अप्रैल 2026 के आलोक में निर्देश जारी कई गई है। यह संबंध में जारी पत्र के अनुसार विभाग द्वारा किसान के सुविधा खातिर ई मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कई गई बाटे, जेकरे माध्यम से किसान कृषि विभाग के हर तरह के योजना का लाभ ले सकेला। साथ ही साथ उनके आधुनिक तकनीक, फसल के बाजार भाव, मौसम के जानकारी आ पौधा संरक्षण से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी बाटे जो कि आसानी से यह मोबाइल एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकेला।
1: अब देखी कुछ और हमनी के भी खबर बा। जेल आदमी सोचेला कि जेल जे गईल बा वो निकली तो फिर उहे का मुआ करी, बहुत एगो दिमाग में आदमी के बन गईल बा, लेकिन जेल बनावे के उद्देश्य ही ना रहे कि

0: बंद करा दो, चार दीवारी के अंदर बंद कर दो। अब जेल जौन है तो सुधार गृह के रूप में परिवर्तित हो गई बा, उस एक तरह से सुधार गृह है। तो अभी जितना जेल में जे लोग बंद बा, जे किसानी खेती से जुड़ल लोग भी बा, कितना किसान भाई लोग भी गई बाड़न कोनो ना कोनो मामला में, तो उनका के जौन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा जौना कहल जाला, ओकरा सहयोग से जेल में ही 60 बंदी लोग के बर्मी कंपोस्ट उत्पादन के प्रशिक्षण दिखल गई है। आ उनका की एक एक चीज़ बतावल गई है कि कैसे पहले बर्मी कंपोस्ट के हमनी के उत्पादन कल जाओ, ओकरा ले का लाभ बा। तो मिट्टी खातिर तो बर्मी कंपोस्ट जनते बनी कितना पहले, आ पहलहूँ देखी केचुआ जौन घूमत रहसन है कहीं पहले घूर मान वाला जगह पर केचुआ, आप तो देखे के नहीं खत मन मिलत। तो बर्मी कंपोस्ट के प्रशिक्षण में ये सब पहले बंदी लोग के दियाइल है, आ उनका से ये बात के निहोरा भी कल गई है कि भाई अगर तू बेल पर चाहे सजा मुक्ति के बाद जब भी जा घरे, तो अपन जौन खेती गृहस्थी अपन पैर पर खड़ा रह, राष्ट्र के निर्माण में अपन योगदान दो, और राष्ट्र के जब निर्माण हुई तबे तू अच्छा नागरिक हो। तो उनका के जेल के जे एजा के अधीक्षक बाणन सुजीत कुमार राय जी भी, तो वो भी बहुत एक एक चीज़ बतौलन ना, बहुत प्रोत्साहित हुई कैलन उनका के कि भाई जे भी बा जे पढ़े लिखे वाला बा वो अपन काम करे, जे खेत कोई मजबूरी बस चल गई बा जेल में, लेकिन अगर निकले तो वो एक अच्छा नागरिक बन के और वगैरह समाज के ताना सुने से बढ़िया बा कि वो अपन काम करके अपन नाम कमाए। तो ये बहुत अच्छा पहल लागल है रनिया बहन। और दूसरा चीज़ कि देखी अभी गर्मी के दिन बा, पानी बरस गई अभी से ही, मैंने अब आम के जो सीजन बा, गर्मी आवे आदमी आम के चर्चा ना करे तो बड़ा अधूरा लगे ला। तो इनका पारी तो भारतीय आम के क्रेज पूरा दुनिया भर में बा। तो अभी जो अमेरिका में भारत के आम के बहुत माने एडवांस बुकिंग हो रहा बा, और पिछला बार से 33% महंगा पर हो रहा बा। तो माने जब अमेरिका में जे रहे वाला लोग बा, वो भारतीय आम के उनका इतना दीवानगी देखल जा रहा बा कि फ्लाइट्स के वो लोग ट्रैक कर रहा बा कि कहिया अब हमार एजा से पहुँच रहा बा, और सब पहले प्री ऑर्डर पहले से माने बुकिंग लेके आ बिकता। आ एक बॉक्स में मान 10-12 आम के एगो बॉक्स तैयार कल जाता, वो लगभग 5600 रुपया तक वा खातिर खर्चा करे के तैयार बढ़ जाए वो लोग ये जाके आम खाए खातिर। हाँ लेकिन ये बाकी भाई तरी क्वालिटी अगर अच्छा पैसा कमाए के बाद अच्छा गुण देवे के पड़ी। अब जबकि पिछला साल यही मैंने 10-12 हुआ आम के जो जात रहे जैसे वगैरह खातिर 3700 से 4200 रुपया तक खर्च होते रहे, आ इनका पारी 5600 रुपया एक बार देवे के तैयार बढ़त। आ वो पहले जल्दी बुकिंग में नहीं खे मिलत। तो ऐसे हमनी के चाहिए कि अपन देश के भी नाम दुनिया में खेती गृहस्थी और एजा के उत्पादन के हो रहा बा, हमनी के एकर
1: अमेरिका तक पहुँच गए हमने गया।
0: हाँ एक और बढ़ावा देवे के चाहिए,
1: बढ़ावा करे के बाटे और आगे बढ़ावे के बाटे, खेती जम के करे के भी बाटे। अब हमने के सुना जाए थे वार्ता, अब हमने के आम के बात हुई गई तो भाई वाटिका और चलल जा,
0: वाटिका भी चलल जा।
1: हाँ चलल जा सुनल जा वार्ता। एक आज का विषय बाटे गृह वाटिका कितनी लाभदायक। वार्ता कर बनी डॉक्टर रीता सिंह। तो गृह वाटिका में
0: रीता सिंह बहुत डॉक्टर रीता सिंह बहुत अच्छा कृषि वैज्ञानिक है, बहुत जानकार है, कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज से जुड़ल भी बाड़ी, और खासकर महिला लोग के उद्योग के कृषि क्षेत्र में उद्योग खातिर इनका बहुत बड़ा नाम बा, और बहुत आगे महिला लोग के कृषि के क्षेत्र में ले भी गई बाड़ी। ताई यहाँ से हमनी के वार्ता सुना।
2: रोहतास जिले के सभी किसान और किसान भाइयों और बहनों को हमारा प्रणाम। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों आप जानते हैं कि गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को ताजे फल एवं सब्जी प्रतिदिन उपलब्ध कराना है, जिससे शरीर को प्रतिदिन पौष्टिक तत्व विटामिन और खनिज लवण मिल सके। साथ ही साथ यह प्रतिदिन घर के बजट के लिए भी लाभकारी है। यह एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है। गृह वाटिका में व्यक्ति अपने अल्पकालीन समय का उपयोग मनोरंजन के रूप में भी करता है। यह वाटिका

आजकल समृद्ध परिवार की पहचान बन चुकी है। बाजार के बदलते परिवेश में सब्जी मंडी में सब्जी ताजे दिखने वाले सब्जियों में रंग का व्यवहार किया जाता है, जिससे कि बासी सब्जियां भी ताजी प्रतीत होती हैं। और तो और उनमें कीटनाशक दवाओं का अवशेष भी मौजूद रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्रीन वाटिका का मुख्य उद्देश्य आय नहीं बल्कि पारिवारिक लाभ, अभिरुचियों का सदुपयोग तथा स्वस्थ मनोरंजन है। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्जी वाटिका में जो उत्पाद प्राप्त होता है वह स्वच्छ और ताज़ा होता है और उससे पोषक तत्वों की हानि न के बराबर होती है। ग्रीन वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियां में पोषक तत्व विशेष रूप से विटामिन और भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ले जाने ले आने तथा भंडारण के दौरान पोषक तत्वों की हानि न के बराबर होती है। साथ ही साथ अगेती और पिछेती सब्जियां की प्राप्ति भी की जा सकती है, जो कि बाजार में काफ़ी महंगी मिलती है। इसलिए ग्रीन वाटिका उत्पादों का मूल्यांकन बाजार भाव पर किया जा सकता है, किंतु उनके पोषक तत्व के महत्व के आधार पर नहीं। यह नहीं कि जब हम बाजार में से सब्जियां खरीदने जाते हैं तो आने जाने में लगने वाले समय के साथ साथ परिवहन में भी व्यय होता है। यदि आने जाने में लगे खर्च समय के व्यय की तथा पोषक तत्व की हानि को भी ध्यान में रखकर आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाए तो ग्रीन वाटिका निश्चित रूप से आमदनी का स्रोत बन सकता है। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों जानते हैं कि सब्जी वाटिका मकान के पिछवाड़े में बनाया जाता है, इसमें हर तरह की सब्जियां लगानी चाहिए। वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर कुकुरबिटेसी कुल की फैमिलियां जैसे कि कद्दू, लौकी, करेला, परवल, खीरा, खरबूजा, ये सब ले सकते हैं। लिगुमिनस फैमिली की सब्जियां टमाटर, सेम, लोबिया, क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी ले सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले भाग के आधार पर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे जड़ वाली सब्जियां मूली, गाजर, शलगम, कंद वाली आलू, शकरकंद, शलकंद जैसे प्याज, लहसुन, पत्तियों वाली सब्जियां पालक, मेथी, चौलाई, धनिया, फूल वाली सेम, लोबिया, मटर। कोशिश करनी चाहिए कि जड़ वाली सब्जियां मेड़ पर लगानी चाहिए। गहरी जड़ वाली सब्जियों के साथ उतली जड़ वाली सब्जियां की कतार लगाकर मिश्रित खेती कर सकते हैं। और तो और मौसम के आधार पर भी सब्जियां लगानी चाहिए, जैसे कि जायद की सब्जियां लौकी, करेला, भिंडी, लोबिया। वर्षा ऋतु में भी सब्जियां जैसे कि आप लेते ही हैं, लौकी, परवल, तोरई, करेला, चौलाई। जाड़े की सब्जियां मूली, शलगम, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मेथी, मटर, सेम, आलू, प्याज। ये तो बात हुई सब्जी वाटिका के साथ साथ फल वाटिका मकान के पिछवाड़े या दोनों किनारे में बनाया जाता है। इसमें मध्यम ऊंचाई वाले वृक्ष जैसे अमरूद हुआ, अनार, केला आदि लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका के बाहरी मेड़ पर पपीता या आंगन में अंगूर की बेल फैलाई जा सकती है। फूल वाटिका घर के किसी भी कोने में बनाई जा सकती है, जिसमें कि आप बेला, चमेली, गुलदावदी, गेंदा लगा सकते हैं। ग्रीन वाटिका में सब्जियों के बीज लगाने के लिए एक पौधशाला होना बहुत आवश्यक है। आप सबों से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ घर के कूड़े कचड़े तथा घर की रसोई घर के अवशेष तथा फसल अवशेष के सदुपयोग के लिए एक खाद का गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे के ऊपर कोशिश करना चाहिए कि पंडाल बनाकर लतर वाली सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं। सभी जगह का सदुपयोग करना चाहिए। ग्रीन वाटिका का आकार अपने घर के पास जमीन की उपलब्धता या परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है, जो वाटिका की सही देखरेख कर सकते हैं। उस हिसाब से आप ग्रीन वाटिका का आकार बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 5 हो तो 250 वर्ग मीटर की ग्रीन वाटिका में सफलतापूर्वक फल एवं सब्जी लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी सही देखभाल कर सकते हैं। आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर ग्रीन वाटिका सब्जी, फल, फूल तथा फसल प्रदान हो सकती है। जहां तक संभव हो ग्रीन वाटिका रसोई के स्थित हो, ताकि रसोई का पानी आसानी से ग्रीन वाटिका तक पहुँच जाए और सब्जी वाटिका का उत्पाद भी आसानी से रसोई तक पहुंच जाए। ग्रीन वाटिका को अधिक से अधिक फायदेमंद बनाने के लिए पहली बात कि सब्जी वाटिका के लिए खुली जगह होनी चाहिए, जिसमें कि अच्छी तरह से सूर्य की रोशनी मिल सके, क्योंकि छायादार जगह पर फल और सब्जियों के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ सिंचाई जल का निकासी भी अच्छी
सिंचाई और जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे किसान भाई कम ध्यान देते हैं।

0: इस पर। और तो और कोशिश करनी चाहिए कि सब्जी वाटिका को मुख्यतः दो भागों में बांट दे। एक होता है मेरा स्थायी क्षेत्र, जिसमें कि फसल के लिए यानी अस्थायी फसल चाहे बहुवर्षीय फसलों के लिए होता है, जिसमें मुख्यतः आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, जैसे केला, नींबू, अमरूद, पपीता। कुछ बहुवर्षीय सब्जी भी लगा सकते हैं, जैसे कि सहजन, कुंदरी, खेक्सा। दूसरा है मेरा अस्थायी क्षेत्र, इसमें प्राय एक वर्षीय वाली सब्जी लगा सकते हैं, जिसमें कि हम आवश्यकता अनुसार अनेक भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सब्जी वाटिका की घेराबंदी पर लत्तर वाली सब्जियां लगानी चाहिए। इस फसल से सब्जी के साथ कुछ हद तक सब्जी वाटिका की सुरक्षा भी होती है, जैसे सेम वर्गीय, खीरा वर्गीय, बरसात और जाड़े में। बरसात में जाड़े में आप मटर लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका में दो प्लॉटों के बीच वाली जगह का उपयोग जड़ वाली सब्जियों के लिए करना चाहिए, जैसे मूली, गाजर, बीट लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका में के अस्थाई क्षेत्र में दोनों किनारे पर गड्ढा खोदकर वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद भी कहते हैं, या सिंपल खाद जो बनाते हैं आप लोग, उसको कोशिश करें कि बना लें। सब्जी वाटिका के स्थायी क्षेत्र को अपने संतुलित पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर अलग अलग सब्जियों को अलग अलग प्लॉटों में लगाने चाहिए, ताकि सालों भर आपको सब्जी उपलब्ध हो। विभिन्न तरह की सब्जियां, जैसे कि पत्ती वाली सब्जियां, पालक, बंधा गोभी, मेथी, बथुआ, लाल साग लगा सकते हैं। दलहनी सब्जियों में मटर, बोड़ो, सेम वाली सब्जियां ले सकते हैं। सलाद वाली सब्जियां मूली, गाजर, चुकंदर ले सकते हैं। मसाले वाली सब्जियों में आप प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया। फल वाली सब्जियां तरबूज, खीरा, खरबूजा ले सकते हैं आप। और जो विभिन्न तरह की सब्जियां हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी वर्गीय, गाजर, मूली, सलगम, लत्तर वाली सब्जियां ले सकते हैं। और साथ ही साथ फल के लिए केला, पपीता, अमरूद, नींबू, ये सब आप अपने आंगनबाड़ी में लगा सकते। ये जितने भी चीज बताई गई हैं, उसको अगर ध्यान में रख के अगर गृह वाटिका का निर्माण किया जाए और उचित फल और सब्जियों का चुनाव किया जाए, तो हम सभी को प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियां मिल सकती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और अपने घर के बजट को कम करने में सहायक होगा। यदि सब्जी वाटिका को सुनिश्चित ढंग से बनाया जाए, सघन फसल चक्र उपयोग किया जाए और बाड़ पर लत्तर वाली सब्जियां लगाई जाएं, तो अधिकतम उपज प्राप्त करके 250 से 300 वर्ग मीटर सब्जियों के लिए प्रतिदिन कम से कम ₹1 का शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद।
1: देखिए, बहुत बढ़िया जानकारी देनी है डॉक्टर रीता सिंह जी।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गृह वाटिका कितना हमनी खातिर लाभदायक बाटे, बड़ा सुंदर, बड़ा फरिया फरिया के बताई।
1: बहन एक एक चीज बतौनी है कि कैसे हमनी के कम जगह में भी का का सब्जी लगावल जाओ, जा कौन कौन मसाला लगावल जाओ, साग लगा दिया हो, कि मैंने सालों भर ही चलत रहे, सालों भर ओकर उपयोग हुई, ओकरा से आमदनी भी बढ़ावल जा सकेला। तो यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखिए, कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले कुछ संदेश भी,
2: बिल्कुल सुन लेहल जाओ संदेश।
1: आई सुनल जाओ ये संदेश।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल

0: Mission, Tail Palm National Mission on Edible Oils, Oil Palm, NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रख रखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: श्रोता भाई बहन अभी हमने के सुनत रहे हैं जा कुछ संदेश। आज देखें रनिया बहन
1: जी जी,
0: अब हमने के नई दौर की नई बातें में आज देख सुनल जाओ, चर्चा कर जाओ, नील हरित शैवाल के उपयोग हमने के कैसे कर जाओ।
1: जी जी जी, एकरा के हमने के देखें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहल जाला, जेकरा के की खेती खातिर के बहुत ही उपयोगी मानल जाला श्रोता सभे। आ खास करके अगर देखल जाओ सुमन भाई, तो धान के खेत में एकर उपयोग किसान भाई लोग खातिर काफ़ी फायदेमंद होखेला। आ ई एगो प्राकृतिक रूप से माटी में नाइट्रोजन बढ़ावे का काम करेला, जेकरा से कि का होला कि खेत में जोन उर्वरता बाटे वो बढ़िया बनल रहेला, ज़्यादा भी बनल रहेला और फसल भी स्वस्थ रहेला। आ देखतनी कि आजकल जोन किसान भाई लोग बान उ ज़्यादा फसल उत्पादन करे के चक्कर में रासायनिक खाद के ज़्यादा उपयोग कर रहल बाने, जेकरा से कि उनकरा के परेशानी उठावे के पड़ रहल बाटे। तो भाई नील हरित शैवाल जोन बाटे एकदम सस्ता बाटे, ई पर्यावरण खातिर के सुरक्षित भी बाटे, टिकाऊ भी बाटे। ई उपाय रउआ लोग अगर अपनावता नहीं जाए तो मैंने बहुते बढ़िया रहा, और फसल भी हो कि माटी उपजाऊ भी हो कि आ खेत के जोन बा उत्पादक क्षमता भी ज़्यादा बढ़ी। जी
0: तो देखिए बहुत बढ़िया रहा बतौनी, और वैसे भी जो जम जाला जो नील हरित शैवाल मिट्टी के इतना उकर विटामिन है एक तरह से,
1: हाँ, हाँ,
0: स्वस्थ रही मिट्टी।
1: जी जी,
0: और कुछ चिट्ठी पत्री भी हमने के यहाँ आई बा।
1: जी जी जी जी, चिट्ठी तो आई बटे
0: हाथ में देखा था नहीं रवा, चिट्ठी ले के बैठल बा।
1: जी जी, देखी हमारा हाथ में चिट्ठी आई बटे, ये आई बटे जमुहार गोपी बिघा सासाराम डिहरी के आसपास जोन बटे, वो आई बटे वहाँ लिखे वाली बानी अनिल सिंह, सुनील सिंह, जगन्नाथ सिंह, काजल देवी, रिंकी कुमार।

0: कुमारी ज्योति कुमारी
1: क्या लिखा था नहीं सब
0: यहाँ लोग लिखा था नहीं कि मतलब सबसे पहले तो भाई यहाँ लोग चिट्ठी देवे खातिर के बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद भाई यहाँ सबके हमने के कार्यक्रम यहाँ सब सुनो तो नहीं
0: जा सुना था नहीं जा
1: हाँ के हमने के चिट्ठी भी लिख के बतावा तो नहीं जा तो यहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जा
0: लिखा था नहीं जा यहाँ के सुमन भाई की घर के पास काफी जमीन बटे अच्छा है घर अंगना भी इनकर काफी बड़े गो बाटे ओहिजा ये लोग चाहता कि माने फल और जौन सीजनली जौन सब्जी बाटे ओकर खेती हमने के करी जा जौन भी फल वल का खेती बाटे आ एकरा खातिर कि कौन कौन फल सब्जी का उत्पादन हमने के करे के चाहिए ताकि बढ़िया उत्पादन हमने के ले सकें जा
1: देखी हमने के तो समय समय पर रनिया भिन्न कृषि वैज्ञानिक लोग के माध्यम से बतावे के प्रयास करें जा कि कौन कौन सब्जी के कौना जगह पर कौना मिट्टी में उपयोग कैल जाओ ओकर उत्पादन कैल जाओ कौना बहुफसली भी बतावे नहीं जा कि एक साथ में कौन कौन फसल एक जगह लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकत नहीं अधिक से अधिक कमाई कर सकत नहीं
0: जी
1: तो यहाँ के जौन प्रश्न बा हमने के आजे जिसे देखें कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रीता सिंह जी बतौनी हाँ कि कैसे पहले हमने के गृह वाटिका में का लगावल जाओ तो यहाँ के जौन जमीन कहतनी कि घर के पास बा मैंने खड़ होके अगल बगल आंगन बहुत बड़ा बा तो गृह वाटिका ही है और गृह वाटिका खातिर तो आज तो बहुत विस्तार से बतौनी है डॉक्टर रीता सिंह जी यहाँ के बतौनी है कि कम जगह में हमने अधिक से अधिक सब्जी के उत्पादन कैसे कैल जाओ तो ओहू में यहाँ के भी बतौनी है कि कम हमने के मसाला के भी ओकरा साथ उपयोग कैल जा सके
0: जी जी जी
1: तो अब चलो चलो देखिए अब मौसम के भी मिजाज पर एगो नजर डालल जा
0: जी डाल जा देखिए अभी मौसम विभाग विज्ञान द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी आ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना बटे ओकरे साथे साथे हल्का आ मध्यम बरखा होखे के भी अनुमान लगावल जा रहल बटे अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 70-75% दोपहरिया में 30-35% रहे के संभावना बा आ पूर्वानुमान की अवधि में 15-16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना बाटे
1: ओलावृष्टि के भी संभावना जतावल जा रहा बा हमने के अपन और पशुअन के भी देख के रक्षा करे के चाहिए ऐसे खुला में या पेड़ के नीचे ना जाए के चाहिए बिजली बिजली गिरे के डर रहेला
0: आ देखिए यह पूरा किसान वाड़ी कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही अमित कुमार आ यही के साथ अब हमने के किसान वाड़ी कार्यक्रम का समय अब एकदम खत्म होत बाटे चलत चलत सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार आ सुमन भाई रहो के नमस्कार
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम रनिया बहन रहो के नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब सुनिए कार्यक्रम सांझ गीत।

भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पहला गीत हमने आपको सुनवाया रेखा राव की आवाज़ में, पारंपरिक बोल थे आशुतोष सिंह का, संगीत था फिल्म देसवा। और ये गीत आपको सुनवा रहे हैं धरती कहे पुकार की फिल्म का, धनंजय कुमार, राहुल सक्सेना और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें आप सुनेंगे इस गीत में। और गीतकार हैं विनय बिहारी, धनंजय मिश्रा का संगीत है।

0: सुन, सोचतानी कि काहे न आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले त कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तुहरा से? त बतावो।
1: आकाशवाणी बा न, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा के का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई।
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

गंगा जाई जैसन माई हमार फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना। विनय बिहारी गीतकार और संगीतकार थे राजेश गुप्ता। और अब आपको सुनवा रहे हैं दिनेश लाल यादव, इंदु सोनाली और सुप्रिया की आवाज़ों में ये गीत। परिवार फिल्म का विनय बिहारी ने लिखा है और धुन बनाई है धनंजय मिश्रा ने।

और कार्यक्रम में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म का, उषा मंगेशकर की आवाज़ में लक्ष्मण शाहबादी का लिखा गीत है, संगीत दिया है चित्रा गुप्ता ने।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझ गीत एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। ममता का आंचल कार्यक्रम शनिवार का दिन है। हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से एक छोटी सी जानकारी। हम दे दें कि ये कार्यक्रम, हालांकि आप जानते हैं, वैसे कपल के लिए, वैसे दंपत्ति के लिए है जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। शादी के कुछ साल बीत गए हैं, 1, 2, 3 कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है और अब बच्चे की चाहत भी है। ऐसे में वैसे दंपत्ति के लिए कार्यक्रम हम लेकर आते हैं कि आईवीएफ पद्धति से इलाज करवाया जाए तो बच्चा ठहर सकता है। ये एक सिर्फ छोटी सी बीमारी है, पहले ये पता लगाना होगा क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, काहे बच्चा नहीं हो रहा है, और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आपको जाना ही होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ को हम लेकर आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्रद्धा चकय्यार। लगातार वर्षों से आपके घर आंगन में हम आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और अब थोड़ा बहुत विश्वास भी जमने लगा है। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि जो विश्वास आपने हम पर दिखाया है वो आगे भी जारी रहना चाहिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और डॉक्टर श्रद्धा अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, बाकी सब ऊपर वाला जाने। बहरहाल, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट कीजिए जिन लोगों ने आज से हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है। नंबर है 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। वैसे दंपत्ति, हाँ, गांव देहात में अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बताएं कि जिनके शादी के 3-4 साल हो गए हैं, समझ रहे हैं ना, बच्चा नहीं है, अब घर बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो नंबर दिए हैं ना 9162562266, इस पर बातचीत कर लेना है। जहां चुप्पी टूटती है, हम यही चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, जहां चुप्पी टूटती है वहीं इलाज शुरू होता है। नमस्कार, तो हमने आप लोगों को कह लिया, और पिछले हफ्ते हमने एक सवाल उठाया था, उंगली बहु पर ही क्यों उठती है, एक उंगली नहीं, उंगलियां कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज हम उससे भी बड़ा सच सामने लाने वाले हैं। घर में समस्या है लेकिन उस पर बात नहीं होती, जांच हो सकती है लेकिन कोई पहल नहीं करता, सच्चाई सामने आ सकती है लेकिन हम चुप हैं। क्यों भैया, क्यों चुप हैं? और यही चुप्पी इलाज को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। डॉक्टर साहिबा आ जाइए, स्वागत है आपका, और हम सिलसिला शुरू करेंगे सवालों का। अब तक आप समझ गए होंगे।
3: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
2: अच्छा बताइए, क्या कारण सिर्फ महिलाओं में है या हम सच्चाई जानने से बच रहे हैं?

0: राजेश जी, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि कारण सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है। आज जितना भी रिसर्च आया है उसमें ये पता लगा है कि अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहरता है
1: जी,
0: 30% कारण उसमें पुरुष होते हैं
1: जी,
0: 30% महिलाएं होती हैं
1: हाँ,
0: और 40% कारण अनएक्सप्लेन्ड होता है
1: हाँ,
0: यानी कि वो महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है
1: हाँ,
0: और दोनों में भी हो सकता है
1: जी।
0: तो बीमारी अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहर रहा है तो कारण पुरुष और महिला दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जांच कराना। अगर आप जांच कराएंगे तभी बीमारी पकड़ेगा, पकड़ाया जाएगा और तभी इलाज होगा। निसंतानता सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। आज के दौर में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है
1: जी।
0: और निसंतानता, जैसे पुराने जमाने में अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहरता था शादी के 3-4 साल हो

0: जाएगा। निसंतानता सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। आज के दौर में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है
1: जी।
0: और निसंतानता, जैसे पुराने जमाने में अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहरता था, शादी के 3-4 साल हो गए तो फिर नहीं ही ठहरता था, लेकिन आज मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा देन है हर निसंतान दंपति को, और वो है IVF। तो अगर आप जांच कराते हैं तो फिर आपका इलाज संभव है। हो सकता है दवाई से ठीक हो सकता है कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर से ठीक हो, और जिनकी बीमारी बहुत जटिल है उनको IVF से भी बच्चा ठहर सकता है। लेकिन जरूरत है चुप्पी तोड़ने की, पहल करने की। हर दंपति जिनको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है, अगर वो पहल करेंगे तो रास्ता जरूर सामने आएगा और उन्हें बच्चा अवश्य प्राप्त होगा।
1: लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने भी देखा है, जिया है इस चीज को, कि पुरुष जांच की बात जब भी आती है तो चुप्पी छा जाती है।
0: बिल्कुल सच। आज भी जमाना चाहे जितना भी आगे हो गया हो, पुरुष आज भी अपने जांच से हिचकिचाते हैं
1: जी।
0: मैं इसमें एक आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ कि
1: बिल्कुल।
0: एक दंपति मेरे पास आए, जहाँ हमने जब औरत का जांच किया तो पता चला कुछ उनको दिक्कत है
1: जी।
0: तो कुछ दिक्कत है लेकिन वो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था, वो इलाज से ठीक हो सकता था। लेकिन जब मैंने पुरुष को कहा जांच कराने के लिए तो वो हिचकिचा गए और वो बोले कि जब दिक्कत महिला में ही है तो मेरा जांच का क्या जरूरत है। तो मैंने बहुत समझाया तो किसी तरह से वो जांच के लिए तैयार हुए
1: जी।
0: उनको उनमें भी कुछ दिक्कत पाया गया, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों में छोटा छोटा दिक्कत था
1: जी।
0: उन्होंने जांच किया, पहल लिया और आज उनके पास बच्चा है।
1: एक बात तब यहाँ समझ में आती है कि मतलब बीमारी से ज्यादा हम सच्चाई से डर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, खासकर पुरुष एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि उनमें अगर शुक्राणु की कमी है तो उनके मतलब पुरुष में मेलनेस में कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है। और पुरुष में अगर दिक्कत है तो इसके लिए एक छोटा सा जांच होता है जिसको हम लोग सिमेन एनालिसिस कहते हैं, यानी कि धात का जांच होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप जांच कराएंगे तभी रास्ता खुलेगा।
1: जांच कराएंगे तभी रास्ता खुलेगा। हम आगे चुप्पी पर ही बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम ममता का आंचल चल रहा है। वैसे दंपतियों के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं है, डरते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ये मुहिम चला रहा है कि अब चुप्पी तोड़ना है, चुप्पी तोड़ना है और तभी इलाज शुरू होगा। हम नंबर बता रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा चखियार का, नोट कीजिए 9162562266, 9162562266। एक और बात, पैसे को लेकर हिचकते हैं, अब यहाँ श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में EMI पर, हाँ EMI की सुविधा है, टुकड़ों में आप पैसा दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 महीने नहीं, 24 महीने तक टुकड़ों में आप पैसा दे सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, ध्यान से आप इस कार्यक्रम को सुनिए और हमारी और डॉक्टर श्रद्धा की कही गई बात को एकदम चैन से सुनिए और उसे अपने बच्चों तक पहुंचाइए, इनिशिएटिव लीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, अगर हम ये चुप्पी तोड़ दें और दोनों की जांच कराएं तो क्या बदलता है?
0: सब कुछ बदल सकता है। जब कपल साथ में टेस्ट करवाते हैं तो सच्चाई जल्दी सामने आती है
1: जी।
0: ब्लेम गेम यानी कि एक दूसरे पे जो दोषारोपण है वो खत्म हो जाता है
1: जी।
0: सही ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होती है और सबसे जरूरी, पति और पत्नी का रिलेशनशिप मजबूत होता है
1: जी, जी।
0: क्योंकि अब ये समस्या किसी एक का नहीं होता है, ये एक जर्नी बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि कपल चुप्पी तोड़े और इलाज कराएं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ निसंतानता होती क्या है।
1: बिल्कुल।
0: वैसे दंपति जो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो उनको कहा जाता है ये दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं। तो जरूरी है अब जांच कराना और इलाज कराना। अगले 1 साल

0: आप किन्हीं से भी इलाज कराइए, जांच कराइए और इलाज कराइए। अगर 2 साल में बच्चा ठहर गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तरफ से भी बधाई उनको। लेकिन अगर 2 साल अब हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा है, तो जरूरी है कि अब आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि वो आपका बीमारी बेहतर पकड़ेंगे। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, उसमें उम्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर महीना उनके बच्चा ठहरने की संभावना घटते जाती है। बच्चे ठहरने की संभावना सबसे ज्यादा जो होती है वो शादी के पहले साल होती है। 80% दंपति को इसी समय बच्चा ठहर जाता है। जिनको 1 साल में नहीं ठहरा, उनको अगले 1 साल यानी कि 2 साल में 90% दंपति को बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर 2 साल में भी नहीं ठहरा तो हर महीना उनको अपने से बच्चा ठहरने की संभावना 3-4% होती है और ये घटते जाती है, यानी कि 5 साल के बाद वो 1% या 0.5% या 0% हो सकता है। इसलिए अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे और सही जगह जो उसके विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे इलाज कराएंगे, तो आपको बच्चा ठहरने की संभावना बढ़ेगी। चाहे अगर दवाई से भी अगर आपको बच्चा ठहरने की संभावना है, वो ज्यादा होगा अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे।
1: जी जी।
0: अगर आप कोई प्रोसीजर कराते या IVF जैसा एक कोई ट्रीटमेंट, बड़ा ट्रीटमेंट भी कराते, तो इसकी भी सक्सेस रेट जो है वो उम्र पे डिपेंडेंट है। अगर कोई दंपति 30 साल में करा रहा है, वो समझ गया है कि उसको अपने से बच्चे ठहरने में थोड़ा दिक्कत है, उनको एडवांस ट्रीटमेंट का जरूरत है और उन्हें IVF का जरूरत है, और अगर वो दंपति 30 साल में अपना IVF कराता है, तो उसको बच्चा ठहरने की संभावना काफी ज्यादा है बनस्पत उस दंपति से जो 40-45 साल में अपना IVF करा रहा है। निसंतानता का जो रास्ता है, मतलब निसंतानता टुवर्ड्स बच्चे का जो रास्ता है, वो काफी सरल हो जाता है।
1: डॉक्टर साहिबा ने बहुत विस्तार से बताया कि उम्र पर सारा कुछ निर्भर करता है, बच्चा होना, कितना बच्चा हो सकता है, कितना सक्सेस रेट है, सारी चीज बताए। तो अगर जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, जब जहां चुप्पी टूटती है वहीं से इलाज शुरू होता है। एक छोटा सा सवाल और हम पूछ लेते हैं चुप्पी पर ही। जहां चुप्पी होती है वहां दूरी बढ़ती है, और जहां बात होती है वहीं से उम्मीद शुरू होती है, डॉक्टर साहिबा, हाँ कि ना?
0: बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का इलाज दवाइयों से शुरू नहीं होता है, सच बोलने से शुरू होता है, और सच बोलने के लिए चुप्पी तो तोड़नी पड़ती है। तो अगर कोई दंपति अगर हिम्मत करते हैं, सच बोलते हैं और अपना इलाज शुरू कराते हैं, तो पता चलता है किस कारण से बच्चा नहीं ठहरा है, और जब कारण पता चलता है तो इलाज तो हो ही जाता है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ क्या कारण है जिससे बच्चा नहीं ठहर रहा है।
1: जी।
0: कारण औरत भी हो सकती है, कारण पुरुष भी हो सकते हैं, कारण दोनों हो सकते हैं, या कारण अनएक्सप्लेन भी हो सकता है। हो सकता है औरत के अंडाशय में अंडा खत्म हो गया हो सकता है उसके पास इतने अधिक अंडे हो कि उसको अंडा बन के फूट नहीं रहा हो सकता है औरत का नली जाम हो, जहां औरत का अंडा और पति का शुक्राणु मिलता है। हो सकता है बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो सकता है पुरुष के शुक्राणु में दिक्कत हो। दिक्कत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है चुप्पी तोड़ने का और हिम्मत करके इलाज कराने का। और जब आप इलाज कराएंगे, आपने जब जिस दिन पहला कदम ले लिया, आप समझ लीजिए आप मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे।
1: और अब इसमें पैसा भी आड़े नहीं आएगा। हाँ, बड़े बुजुर्गों आप भी सुन लीजिए, पैसा भी आड़े नहीं आएगा, क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में अब सारी सुविधाएं जो है EMI पर है। आप टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं, बस आपको चुप्पी तोड़ना है, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आना है। एक बार हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता रहे हैं, 9162562266, 9162562266। फोन कीजिए, थोड़ी सी भी शंका है, थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगे आपको कि हाँ हम भी सफल हो सकते हैं, और सफल होइएगा, ये तो एक बीमारी है, तो इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। आज की बात याद रखिए, चुप्पी इलाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, और पहला कदम है खुलकर बात करना, अपनों से, डॉक्टर से, पति पत्नी दोनों साथ।

0: आए, दोनों जांच कराएं और सच्चाई से भागे नहीं। आइए आज एक फैसला करें, चुप्पी तोड़ो, सच को अपनाओ और इलाज की शुरुआत करो। जी हाँ, और मैं आपका राजेश इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर श्रद्धा चकहियार के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करता हूँ, निकलते हैं। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

रोहतास जिला जनसंपर्क कार्यालय। शेरशाह सूरी महोत्सव 2026 पर सासाराम में 21 और 22 मई को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव को लेकर रील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आशीष रंजन ने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदया के निर्देश पर जिला प्रशासन रोहतास की ओर से रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रील शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व व कृतित्व विषय पर बनाना होगा। रील की अवधि 30 सेकंड से 1.5 मिनट तक रहेगा। रील शेरशाह सूरी महोत्सव reel@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर सुन लें, shershahsoorimahotsav@gmail.com। ईमेल पर अपने नाम, पता एवं मोबाइल नंबर के साथ भेजना है। रील भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दी गई है। रील को गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर उसका लिंक ईमेल पर भेज सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार ₹5,000, द्वितीय पुरस्कार ₹3,000 और तृतीय पुरस्कार ₹2,000 दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। DPRO रोहतास।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बिहार सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आवेदन आमंत्रण सूचना बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 के तहत मीडिया कर्मियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के प्रावधान शर्तों एवं पात्रता आदि की विस्तृत जानकारी एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/PRD Bihar से प्राप्त अर्थात डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त नियमावली के अनुरूप ही सभी वांछित कागजात के साथ आवेदन करेंगे। विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन संबंधित जिलों के जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2026 को अपराह्न 4 बजे तक जमा किया जा सकता है।

फिल्म सिर्फ तुम कहिए गीत उदित नारायण की आवाज़ में, समीर की रचना, नदीम श्रवण का संगीत था। कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में आज इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: हमारा केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए शहरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: जो नए टाउनशिप की कल्पना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, और उसके तहत हमको नए शहरों को एक वृहद रूप से भविष्य को देखते हुए उसको हमें विस्तार के साथ साथ उसमें सुविधाएं भी बढ़ानी है। उसके अलावा हमारी जितने भी अभी वर्तमान में शहरी क्षेत्र हैं, जो नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उनमें भी बेटर सुविधाएं फैसिलिटीज हमको पहुंचानी है। लोगों को आसानी से सरकार की सुविधाएं मिले, योजनाओं का लाभ मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी क्षमता के अनुसार 100% देते हुए बिहार की प्रगति के लिए और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकूं।
0: जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर खेत तक पानी पहुंचाने की है।
2: हमारी प्राथमिकता है कि हर खेत तक कैसे सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, एक एक गांव में एक एक खेतों तक, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, सर्वे हो रहा है और हम लोग का टारगेट है कि 30 तक एक भी खेत नहीं छूटे, किसान के खेतों तक पानी पहुंचे।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभागीय चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लोगों के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
3: कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना। तो इसलिए आने वाले समय में एक एक लोग जनता के प्रति जिम्मेवार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी, सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा। और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, या

0: तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे।
1: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को लिखे पत्र में कार्य योजना की रूपरेखा मांगी है। लोक भवन ने कहा है कि जून महीने में सभी विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिति भी अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक को बिहार में नियम कानूनों को सरल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें पुराने कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए डी रेगुलेशन के दूसरे चरण के तहत लंबित मामलों को निपटाकर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ पटना में उच्च स्तरीय बैठक भी की है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए गए। पहली बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। लोक अदालतों में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठ का गठन किया गया था। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अररिया में 1,227, शेखपुरा में 545 और शिवहर में 287 मामलों का निष्पादन किया गया। सुपौल में ट्रैफिक चालान से जुड़े 163 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5,000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को युवाओं की कोई परवाह नहीं है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने की जगह सिर्फ सत्ता बचाने और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी है।
2: हमारे TRE के 4 के बच्चों को मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRE के बच्चों को साथ और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल

0: AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रोहतास जिले में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।
1: दिनांक 10 मई उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव में मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मंत्री लेसी सिंह और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में घायल सभापति राजकुमार कुट्टू का आज पटना में निधन हो गया। उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि अपराधियों की गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की भी मौत हो गई थी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बराड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। अररिया आरएस थाना क्षेत्र स्थित एक किराना गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र तेलंगाना का रहने वाला था। वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के कन्होली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीला इंजेक्शन बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। सुपौल जिले की एसएसबी सीमा चौकी नियोर ने स्थानीय पुलिस की मदद से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 2 महिलाओं को नेपाली शराब और 1,08,000 भारतीय रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने के कारण लगातार लग रहे जाम को देखते हुए मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ

0: अभियान चलाया। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने स्केटिंग प्रतियोगिता के विजेता लव और कुश को सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
3: पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखी गई, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। वहीं मौसम में आई ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को राज्य के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें डेयरी, पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद जिले सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर तथा आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इधर जदयू नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पिछले सप्ताह पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, पार्टी के पूर्व और वर्तमान विधायक जिलाध्यक्ष कन्हैया कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दूसरे दिन बेतिया ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। बेतिया के ऐतिहासिक धरोहर बड़ा रमना मैदान के सौंदर्यीकरण और संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि लगभग 2,26,56,892 रुपए की लागत से मैदान का समतलीकरण कर खाली स्थानों पर मुलायम घास बिछाई जाएगी तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से इस धरोहर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग रही है। बीते दिनों जिले के लोगों को बड़ी सौगात मिली। अब जिले वासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह सुविधा अब जिले में ही उपलब्ध होगी। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने रामनगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बघा और रामनगर के विधायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले दिन कुल 35 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि अब वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बेतिया या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने बताया कि इस केंद्र में प्रतिदिन 45 पासपोर्ट और 5 PCC अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। जिले में

0: निजी विद्यालयों की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी तरुण ज्योत सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक शुल्क वसूली, अनावश्यक फीस और विशेष दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के लौरिया प्रखंड बाल विकास कार्यालय परिसर में 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने बताया कि यह पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रखंड क्षेत्र में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में मानसिक और शारीरिक विकास को मजबूत करना तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिले के होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश प्रसाद को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि की जानकारी सामने आते ही पश्चिम चंपारण सहित पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। पश्चिम चंपारण जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
2: नमस्कार, सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बिहार की नई सियासत पर आधारित विशेष रिपोर्ट। मैं हूं खालिद रशीद। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे की। कौन बना मंत्री, किसे मिला अहम मंत्रालय और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

0: श्रोताओं नमस्कार। हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त रागिनी। तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, हम मुकेश कुमार बोल रहे हैं जबलपुर से।
0: जी जी मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रम हेलो मनपसंद में। और सुनाइए, क्या पसंद है आज आपकी?
1: हमारी पसंद है महाराजा फिल्म का कुछ गीत, लबों पे सकते हैं कुछ ख्वाब, दिलों में सकते हैं जब तुम आ जाते हो सामने।
0: जी हमें भी लग रहा है आपसे बात करके कि आप बिल्कुल हमारे सामने से हमसे बातें कर रहे हैं। और सुनाइए, जबलपुर में क्या हाल चाल है आपके?
1: जबलपुर में वही, अभी तो बारिश हुई सुबह, तो कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ है, बाकी तो अभी धूल, कभी धूप कभी बारिश चलता रह रहा है। मौसम थोड़ा अभी गर्मी का है, तो गर्मी बहुत थोड़ा तेज उमस पड़ रही है,
0: तो मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। और ये उतार चढ़ाव तो होना सही भी है, क्योंकि हमेशा धूप रहेगा तो काफ़ी गर्मी बढ़ जाएगी और फिर चिलचिलाती धूप में बाहर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो उतार चढ़ाव हो रहा है तो अच्छी बात है। खैर, हम जानना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं?
1: हम गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, हम रहने वाले बिहार के मुंगेर जिला के हैं, ग्राम बरेबोलपुर के, यहाँ एमपी में जॉब करते हैं।
0: अच्छा, इसीलिए आप आकाशवाणी सासाराम से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ, हम तो बिहार के जितने भी हैं, पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया है, सभी केंद्र से जुड़े हैं। और आपका फेसबुक में हम देखे थे नंबर, तो सोचे कॉल लगा के ट्राई करते, तो अभी लकी है कि लग गया है।
0: अच्छा, आज पहली बार कॉल लगाए हैं?
1: हाँ, आपका फेसबुक में देखे थे उस नंबर का, बुधवार रिकॉर्डिंग 11 से 12 तक लिख रहा था, तो हम सोचे ट्राई करते हैं, तो आज लग गया संयोग। देखिए,
0: चलिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार आपने कॉल मिलाया और आपका कॉल लग भी गया, तो सचमुच लकी तो हैं आप। और चलिए, पूरी कर रहे हैं आपकी पसंद।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रही हैं
1: मनपसंद,
0: जी? साधना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: कुमारी
0: अच्छा, सासाराम से बोल रही हैं। और साधना जी, क्या करती हैं आप
1: अभी?
0: इस कार्यक्रम में? आप बहुत पहले से फोन लगा रही थी कि अचानक अभी आपने लगाया और लग गया? अच्छा, क्या पसंद है आज आपकी? अच्छा, किस पिक्चर का सॉन्ग है ये? फिल्म कौन सी है? अच्छा
1: मम्मी से बात कर लीजिए। हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो आपका फोन हम उठा भी लिए हैं और बात भी कर रहे हैं। तो जी, जब फोन इन कार्यक्रम शुरू होता है हमारा, रिकॉर्डिंग 11 बजे से, पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक लगातार हमारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, तो नंबर बिजी बताता है, लेकिन अभी तो आपसे बात हो रही है हमारी।
1: ठीक है, हम इसको गाना सुना दिए। मेरी बेटी है, बोल रही थी कि चांदनी यहाँ छुप जा रहे, वो रबड़ी जैसा गाना है, अक्षय कुमार सुना है, और बोलती है तो सुना दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल, चांदनिया छुप जा रहे, ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मनपसंद, नमस्कार।
0: नमस्कार। बताइए क्या शुभ नाम हुआ आपका?
1: मेरा नाम रमेश साहुआ जी,
0: रमेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बिहार बांका जिला का रहने वाला हूँ और इस वक्त जिला फरीदाबाद बल्लभपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: अच्छा, बांका से बोल रहे हैं आप। और क्या सुनना चाहेंगे आज आप हेलो मनपसंद कार्यक्रम में?
1: आज हमको गाना सुना दीजिए, नदिया का पार का फिल्म का।
0: नदिया का पार, ये तो बेहद ही चर्चित फिल्म है और इसके सभी गीत अच्छे हैं। आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: इसके गाने का बारे कौन ही दिशा में लेके चला रे बटोहिया
0: अच्छा, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी। हमारा लोकेंद्र वर्मा जी है एक, वही मैं अच्छा आदमी और सारा कार्यक्रम सुनने वाले को हेलो फरमाइश को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको और आपको भी देना चाहता हूँ
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं आप दोनों लोग को नदिया के पार फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या नाम हुआ आपका?
1: मेरा नाम हुआ कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, राजनगर मधुबनी से मैं बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह कुशेश्वर प्रसाद जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, और आपके नाम पसंद आपकी कार्यक्रम और ई मनपसंद दोनों में हम शामिल करते हैं।
1: जी, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ।
0: तो आकाशवाणी सासाराम के ये दो प्रोग्राम ही आप सुनते हैं कि सारे सुनते हैं?
1: सारे तो नहीं सुनते हैं, ये प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आपकी सुनते हैं, ये पसंद सुनते हैं, और समाचार भी सुनते हैं, नमस्कार रोहतास सुनते हैं।
0: जी, प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम है नमस्ते रोहतास। तो कैसा लगता है आपको नमस्ते रोहतास कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम रेडियो का। आज दूसरी बात है कि आकाशवाणी अपना 90 साल पूरा कर रहा है,
0: जी जी
1: उसके आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी आपने सुना भी होगा, 2 मई को हमारा जो आकाशवाणी सासाराम है इसका भी 38वां स्थापना दिवस था। और
1: 35वां स्थापना दिवस था आपका।
0: जी, इतने सारे आकाशवाणी केंद्र हैं, उसमें सिर्फ आप सासाराम ही सुनते हैं या और कहीं के भी प्रोग्राम आप सुनते हैं?
1: और मैं शुरू शुरू में तो मैं पटना से 1968 से स्टार्ट किया था। अभी हमारी उम्र 73 साल है मैडम। पहले तो मैं आकाशवाणी, वेद भारती, श्रीलंका, उर्दू सर्विस वगैरह सुनता था। जैसे जैसे केंद्र बढ़ता गया राज्य के हिसाब से, जिला के हिसाब से, उसी जगह अभी मैं लोकल में अपना हम लोग का दरभंगा हो गया है।
0: जी, आप बिहार के जो आकाशवाणी सेंटर हैं उन्हें पहले सुनते हैं, उसके बाद आप और सेंटर्स को सुनते हैं, लेकिन आप आकाशवाणी को इतना प्यार देते हैं, आप समय निकालकर हमें पत्र भी लिखकर भेजते हैं, तो इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने।
0: ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके अपने रेडियो सेट पर हेलो मनपसंद कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए।
2: हम तो

0: हेलो मनपसंद।
1: पसंद।
0: हेलो मनपसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। और बताइए क्या हाल चाल है आपके, क्या करते हैं आप? अच्छा, किराना दुकान भी चलाते हैं और आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रम भी सुनते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है आपको?
1: हाँ भाई, एफएम सब गाना सुनते हैं, सब कार्यक्रम।
0: अच्छा, नमस्ते रोहतास सुनते हैं आप?
1: हाँ,
0: सुबह में आता है 7:30 पर।
1: सुबह में 8 बजे तक सुनते हैं,
0: हाँ
1: उसके बाद में शाम में सुनते हैं। शाम में 8 बजे चालू करेंगे तो 11 बजे तक बजते रहता है।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं।
1: हाँ, सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: ये गाना है संगम फिल्म का, मैं क्या करूँ राम मुझे दुखा मिल गया।
0: अच्छा, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या शुभ नाम हुआ आपका?
1: एमडी उषा अंसारी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अकाशी सासाराम से।
0: अच्छा, अकाशी से। तो हमें नए गीत के लिए बहुत फरमाइश आता है ई मनपसंद कार्यक्रम में।
1: जी जी।
0: अच्छा, फरमाइश में कभी कभी आप लोग लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत शामिल नहीं हो रहा है, तो आपको भी पता होता होगा कि ढेर सारे श्रोताओं के ईमेल हमारे पास आते हैं, तो फिर हम बारी बारी से उनको शामिल करते हैं। कभी आपकी फरमाइश हम शामिल करते हैं और कई बार दूसरे लोगों की फरमाइश शामिल करते हैं। तो चलिए, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आज एक फिल्म है, किसी का भाई किसी का जान, उसमें गाना है दिली दिली आंख भरी, ये वाला सुनना।
0: चलिए, किसी का भाई किसी की जान, ये तो सलमान खान की फिल्म है। जी, आपको बहुत पसंद है उनकी फिल्में। चलिए, पूरी कर रहे हैं आपकी पसंद।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्ते समांग।
0: नमस्कार।
1: तो मैं जिला बालोदरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: जी मोहनलाल जी, तो आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपका कॉल लग गया।
1: हाँ बिल्कुल अच्छा लग गया और आपने शामिल किया, ये भी बहुत खुशी की बात है।
0: अच्छा, आकाशवाणी सासाराम के प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: हाँ मैं व्हाट्सएप या ईमेल भेजा रहता हूँ, और व्हाट्सएप पर शाम को 8 से 8:45 शाम को सुनता रहता हूँ।
0: ई मनपसंद में भी भेजते हैं आप?
1: हाँ समय समय पर लगाते रहता हूँ, 1.5 महीने के अंतराल के बाद।
0: अच्छा अच्छा, यानी पहले भी आपके कॉल शामिल हुए हैं हेलो मनपसंद कार्यक्रम में?
1: तीसरी बार है।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: फिल्म का नाम है मन की आंखें, जाने वाले आजा तेरी याद आई।
0: अच्छा, बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है, आपकी पसंद हम शामिल कर रहे हैं हेलो मनपसंद के आज के अंक में।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाग मंदिर में सौ सीतामढ़ी बिहार से अक्रम संत प्रिंस डाक बाबू बोल रहे हैं मैडम।
0: जी अक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो मनपसंद कार्यक्रम में। और सुनाइए अक्रम जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक है, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआ है। प्रोग्राम सुन सुन करके दिल खुश होता है, आप लोग
0: और
1: की
0: आप हमारे
1: मेहरबानी है।
0: यहाँ के
1: नाम
0: नियमित
1: सुन
0: श्रोता
1: तो
0: भी हैं
1: जी,
0: जी, अक्सर आपका नाम शामिल होता है
1: आप लोग का
0: अकरम
1: शुक्रिया,
0: जी।
1: धन्यवाद अदा करते हैं। हम तो पहले बोल दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपको भी कि आप समय निकाल कर हमें रोज ही हमारे किसी ना किसी कार्यक्रम में शामिल रहते ही हैं। अगर पसंद आपकी में नाम शामिल नहीं होता है तो ई मन पसंद में होता है। मुझे लगता है रोजाना आपका नाम शामिल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी नहीं भी शामिल होता है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हमारे
1: हाँ,
0: और भी
1: शिकायत
0: श्रोता
1: करते हैं
0: हैं।
1: आपसे,
0: जी
1: वो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं है,
0: हाँ जी
1: तो जब
0: बिल्कुल।
1: मेहरबानी है तो सब दिन होगा,
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ
1: होगा तो
0: हाँ
1: कोई दिक्कत नहीं है।
0: आज आपका फोन कॉल लगा है तो क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: फिर पत्थर के सलाम मोहम्मद रफी, पत्थर के सलाम शिफा दीप, पत्थर के सलाम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा,
0: चलिए बहुत ही
1: और कुछ
0: अच्छी
1: दोस्तों को
0: फरमाइश
1: याद
0: है।
1: कर लेते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: शेख जफर हसन है, आसिफ खान है, और अहमद भाई फूल वाले, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त है, और कुशेश्वर गुप्ता।
0: जी जी
1: चलिए, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा मैडम।
0: जी चलिए पूरी करते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी। सर हम ग्राम धनेश रोहतास जिला से बोल रहे हैं, नूरे नजर।
0: अच्छा, नूरे नजर जी, रोहतास जिला से बोल रहे हैं आप। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आपने हमें आज कॉल किया है। पहले भी आपके कॉल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
1: बहुत से कॉल शामिल हुए हैं।
0: जी, तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप,
1: आज हम लोग गाना सुनना चाहते हैं, वही
0: तो बता दीजिए किस फिल्म का ये गीत है और बोल क्या है।
1: गाने का बोल है, गुनगुना देते हैं।
0: जी, बिल्कुल।
1: नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी को छोड़ के ना ताजा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार।
0: जी, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा गाया आपने। मुझे लगता है कि आप अक्सर गीत के साथ गुनगुनाते होंगे।
1: जी सर, कभी कभी गुनगुनाते हैं। ऐसे अमित बाबू से भी बात हुई है, हमसे दुबे जी से भी बात हुई है।
0: जी, नूरे नजर जी, हम पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
2: न

0: हेलो मनपसंद
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाटाराम से।
0: जी। दशरथ जी नमस्कार, आपको भी। बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज आप।
1: दिल की राहें ये फिल्म का नाम है, 1973 में बनी थी।
0: जी
1: लता मंगेशकर की आवाज, रश्मि उल्फत।
0: अच्छा, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। जी ये तो बहुत ही खूबसूरत गीत है और मुझे भी ये गीत बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी पसंद तो काफी अच्छी है। क्या करते हैं आप।
1: जी मैं अपने ही गांव में यानी नाटाराम में हेयर कट का काम करता हूँ। सैलून का दुकान है और पूरे दिन आकाशवाणी का प्रसारण चलता रहता है।
0: जी
1: और
0: जी
1: मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाली पीढ़ी भी इसको सुनेगी, आकाशवाणी को समझेगी, क्योंकि आकाशवाणी आज से नहीं 90 साल से हमारे बीच में पहुंच रही है। तरह तरह के कार्यक्रम हमारे लिए तैयार करके आप लोगों की कड़ी मेहनत के साथ पेश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, और आप श्रोताओं का ही ये प्यार है कि आकाशवाणी को भी डिजिटाइजेशन किया गया है और अब तो मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके भी जहाँ का सुनना चाहेंगे, जिस आकाशवाणी केंद्र को, वो आप सुन सकते हैं। तो
1: हम
0: आकाशवाणी की
1: चाहते हैं
0: पहुँच भी
1: कि
0: आपके
1: आपके
0: पॉकेट तक
1: उन्हें
0: हो गई
1: प्रोग्राम के
0: है।
1: साथ साथ कुछ व्हाट्सएप या ईमेल फरमाइश को भी शुरू किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी हम सहभागिता करना चाहेंगे। तो हो सके तो आप ईमेल फरमाइश को भी शुरू
0: तो
1: करें।
0: हमारे यहाँ तो ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद आता है, रोजाना आता है और उसका समय है 7:50 से और रात 8:45 तक रोजाना प्रसारित होता है। रात में ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश भेज भी सकते हैं। फरमाइश भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है akashvanisasaram@gmail.com
1: जी
0: पर।
1: बिल्कुल, इस
0: हाँ
1: आईडी के जरिए आपके यहाँ पर जरूर हम शामिल होंगे।
0: और ईमेल भेजने का एक समय भी निर्धारित है हमारे यहाँ, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक।
1: जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम में हो सके तो आज ही हम शामिल हो जाएंगे।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

तो इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक। तो आप सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो चुके हैं वो हमें कुछ दिनों तक कॉल न करें। अगले बुधवार को हमारे नए श्रोता इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो मनपसंद कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा रिकॉर्डिंग समय है पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक, और हमारा नंबर है 0618422110। तो इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक प्रत्येक बुधवार को रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद का गीत प्रत्येक बुधवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक सुन सकते हैं। और अब इसी के साथ रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। इस कार्यक्रम में हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 0618421130। फ़ोन नंबर फिर से एक बार नोट करें, 0618421130। रिकॉर्डिंग का समय है हर बुधवार प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसी रिकॉर्डिंग समय में आप हमें कॉल करें और अपने फरमाइश के गीत सुन सकते हैं। आप हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

एफएम बैंड का एक एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासांको ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और

0: अन्य सहयोगी पार्टियों के दो दो विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल

0: लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और

0: वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बंगाल में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग 93.71% कुल वोटिंग। FM बैंड के 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए भोजपुरी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकधारा।

भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पहला गीत आपने नीलेश्वर मिश्रा की आवाज़ में सुना, सुरेंद्र प्रसाद की दूसरी प्रस्तुति थी, और ये निर्गुण भजन आप सुन रहे हैं ललन सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकधारा। आइए अब आपको सुनवाते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम महफिल। ये गजल आपको सुना रहे हैं द गोल्डन कलेक्शंस ऑफ फिल्म्स एल्बम का भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी, संगीत दिया है खयाम ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर आधारित कार्यक्रम महफिल। गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल

सपाट गा रहे थे। तब अनिल विश्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है। जलते

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने

फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम में पहला गीत हमने आपको सुनवाया तुम्हें कितना चाहें और हम एल्बम का जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपने सुना था। दूसरा गीत हमने आपको सुनवाया था परंपरा टंडन की आवाज़ में छोड़ देंगे और ये गीत आप सुन रहे हैं गुरु रंधावा की आवाज़ में मेहंदी वाले हाथ एल्बम का। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में दिल गलती कर बैठा एल्बम का गीत।

कार्यक्रम में ये गीत आपको हम सुनवा रहे थे अरविंद सिंह की आवाज़ में। शशिकला कुमारी का लिखा गीत था और अरविंद सिंह का संगीत। और इससे पहले हमने आपको सुनवाया इतना ना याद तुम आया करो एल्बम का गीत प्रियंका सिंह की आवाज़ में। संतोष उत्पाती गीतकार और संगीत दिया था राज गाजीपुरी ने। दिल गलती कर बैठा एल्बम का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपको हमने सुनवाया था। शार्दुल राठौर और मनोज मुंशी की रचना थी, संगीत था मीत प्रोस और शार्दुल राठौर का।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट तराने।

फिल्म दिल्ली का ठक्का ये गीत था। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में शैलेंद्र की रचना संगीतबद्ध किया रवि ने। कार्यक्रम में पहला गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म रामलीला से। आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, संजय लीला भंसाली का संगीत था, गीतकार सिद्धार्थ गरिमा। और अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको ये गीत फिल्म सांवरिया।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म सावरिया का ये गीत था। नुसरत बदर और समीर की रचना, संगीतबद्ध किया मोंटी शर्मा ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत। अरिजीत सिंह और मुश्तबा अजीज़ की आवाज़ में सुनेंगे आप ये गीत। गीतकार हैं AM तुराज और संजय लीला भंसाली का संगीत है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत था बाजीराव मस्तानी फिल्म का, और अब प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में कमर जलालाबादी की रचना, ओपी नैयर का संगीत है, फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट तराने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे अगले दिन के कार्यक्रम का विवरण और मौसम पूर्वानुमान। कल प्रातः यानी 10 मई 2026 को हम आपसे मिलेंगे सवेरे 5:53 पर वंदे मातरम के साथ। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और प्रातः 7:30 पर प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुविचार, आज का इतिहास, स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, मौसम पूर्वानुमान और साथ ही समाचार पत्रों की सुर्खियाँ आप सुनेंगे। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रातः 8:00 देशभक्ति संगीत ये कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 पर और आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी प्रातः 8:20 पर आप सुन सकेंगे। प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रातः 10 बजे से और प्रातः 10:05 से बाल श्रोताओं के लिए कार्यक्रम हम लेकर आएंगे अंकुर। लोक माधुरी ये कार्यक्रम होगा प्रातः 10:30 पर और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार आपको सुनवाएंगे प्रातः 10:45 पर। प्रातः 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर विज्ञान एवं पर्यावरण ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। शाम 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर सांझ गीत, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर। गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुनेंगे शाम 7:25। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ई मनपसंद, आपके ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम है ये। और समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। कार्यक्रम लोकधारा हम आपके लिए लाएंगे रात्रि 9:00। महफिल ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले। कार्यक्रम ड्रेस रंग ये आप कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00। और रात्रि 10:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25%, हवा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा, पवन दिशा 100 डिग्री, क्लाउड कवर ओकटा 6। आंधी और बिजली तूफान आदि ओलावृष्टि, तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।

आंधी, तेज हवाएं और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल फल झड़ना, कीट रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुंचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

अभी आप सुन रहे थे हमारे अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और मौसम पूर्वानुमान। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड

0: परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other